0: कार्यक्रम घर आंगन सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा यानी प्रतिभा का और
1: रश्मि कुकरेति का प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोताओं, आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और रश्मि जी, हमारे इंद्रप्रस्थ चैनल के लिसनर्स हमें सुन रहे हैं मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी कि 819 किलो हर्ट्ज पर। और देखिए रश्मि जी, जो हमारे श्रोता है ना, उनका साथ हमें वो ऊर्जा देता है जिससे हम अपने कार्यक्रम को बेहतर बनाने की कोशिश कर पाते हैं, क्यों?
2: जी बिल्कुल।
0: और तो ऐसे ही हम अपने श्रोताओं से कहेंगे कि हमारे कार्यक्रम के साथ आप ऐसे ही जुड़ते रहिए और हमें हर रोज एक नई ऊर्जा से भरते रहिए। तो करते हैं कार्यक्रम का आगाज अपने आज के प्रश्न से, क्यों?
2: जी।
0: और
2: प्रश्न से पहले कुछ एक जानकारी भी दे दें।
0: हाँ जी, हाँ,
2: तो देखिए, क्योंकि आज जो है हम याद कर रहे हैं मशहूर शायर जिगर मुरादाबादी को, और उनकी पुण्यतिथि है आज, और उर्दू के प्रसिद्ध शायरों में उनका नाम गिना जाता है। जो उनकी गजलें हैं वो प्रेम और संवेदना का संदेश देती हैं।
0: जी जी बिल्कुल। और देखिए, काफी अभी अपनी अभिव्यक्ति के लिए काफी प्रसिद्ध रहे मुरादाबादी जी, और आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और देखिए, आज साथ ही साथ आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाने वाले भारत तेंदु हरिश्चंद्र जी की भी जयंती है। और आपका जो मूल नाम हरिश्चंद्र था और भारत तेंदु उनकी उपाधि थी। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारत तेंदु हरिश्चंद्र से ही माना जाता है। उन्होंने गद्य से लेकर कविता, नाटक और पत्रकारिता तक हिंदी का नक्शा बदल कर रख दिया था, है ना?
2: और अनगिनत जो उनकी रचनाएं हैं, उन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। और अगर हम याद करें तो भाई, अब जो सितंबर माह है, बहुत जल्दी हिंदी दिवस भी आएगा प्रतिभा। और उनका जो कहा हुआ कि निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, अपनी भाषा की जो तरक्की जब होती है तो फिर सब तरफ से तरक्की होती है, तो इसी से कुछ जुड़ा हुआ है हमारा आज का प्रश्न। तो हम आज याद कर रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को और उनकी जयंती पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, और साथ भी ले रहे हैं इसी सब्जेक्ट से जुड़ा, विषय से जुड़ा प्रश्न। वो बताइए आप
0: जी। आज देखिए रश्मि जी, जो भाषा होती है वो सिर्फ संवाद का जरिया ही नहीं होती बल्कि हमारी संस्कृति की पहचान भी होती है।
2: वाह, तो कितनी सुंदर बात
0: जी। और तो हमारा जो प्रश्न है वो ये है कि हमारे श्रोताओं को बताना है कि आपको अपनी मातृभाषा के कौन से शब्द या उनकी उसकी कौन सी खासियत बहुत प्रिय है।
2: वाह,
0: है ना, उसके बारे में हमारे श्रोता आज हमें बताएं। और एक बात और हम कहना चाहेंगे कि आप अपने घरों में बच्चों को मातृभाषा से जोड़ने के लिए क्या कर रहे हैं।
2: ये बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष लिया है प्रतिभा आपने। कई बार ऐसा होता है कि माता पिता जो है वो भाषा अपने आप अकेले में तो बोलते हैं, लेकिन बच्चों के साथ उन भाषा में संवाद नहीं कर पाते। कई बार ऐसा होता है अपने अपने काम में लगे होते हैं तो भाषाएं जो है ना हमारी छूटती सी जाती हैं परिवार में।
0: जी बिल्कुल।
2: तो ये अच्छी बात है कि वो क्या कर रहे हैं।
0: तो हमारे श्रोता हमें इस प्रश्न का जवाब दें, जिसके लिए हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। जी हाँ, fmgoldga@gmail.com।

0: एक रात की। अभी इस फिल्म से आपने गीत सुना, आवाज थी लता मंगेशकर की। और बात करते हैं रश्मि जी जीरो FIR की, है ना?
1: जी बिल्कुल। और ये जो जीरो FIR है, ये एक ऐसी FIR है प्रतिभा, जो घटना होती है वो उसके स्थान के अधिकार क्षेत्र से बाहर वाले भी किसी भी पुलिस थाने में ये जीरो FIR करवाई जा सकती है। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है जीरो FIR, इसके बारे में आप बताएं।
0: देखिए ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि होता क्या है कि अगर घटना किसी दूसरे शहर में पहले होती थी तो जो भी पीड़ित होती थी महिला या कोई भी व्यक्ति, तो वो उस अधिकार क्षेत्र में जो थाना आता था वहां अपनी रिपोर्ट दर्ज नहीं करा सकते थे। तो इस समस्या के हल के लिए अभी ये किया गया है कि अगर घटना किसी भी शहर में हुई है तो आप वहां जाकर उस थाने में अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं।
1: या जिस महिला के साथ घटना दूसरे शहर में हुई है तब भी वो अपने नजदीकी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा सकती है। तो ऐसा होता है जो संबंधित पुलिस थाना होता है वो बाद में उस FIR की कॉपी को क्षेत्र के संबंधित थाने में भेज देता है जहां पर घटना हुई थी। ऐसा जो थाना है वो मना नहीं कर सकता कि जो है उसके ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता। तो जीरो FIR का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि घटना के स्थान को लेकर जो है कोई विवाद ना हो और शिकायत दर्ज कराने में कोई देरी ना हो।
0: हाँ बिल्कुल। और देखिए किसी भी पुलिस थाने में जैसा कि आपने बताया कि शिकायत ये दर्ज कराई जा सकती है, क्षेत्र अधिकार की बाध्यता नहीं है जैसा अभी हम बता ही रहे थे, यानी कि जरूरी नहीं है कि FIR उसी थाने में दर्ज हो जिसके क्षेत्र में घटना हुई है।
1: और महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी है। देखिए कई बार ऐसा होता है जो छेड़छाड़ या हिंसा या कोई ऐसा अपराध हो जाए उस स्थिति में तत्काल अगर

0: शिकायत करानी हो तो ये इस्तेमाल की जा सकती है और दर्ज कराने में, शिकायत दर्ज कराने में इसकी में मदद मिलती है।
1: बिल्कुल, और देखिए शिकायत दर्ज होने के बाद आवश्यक प्रारंभिक कार्यवाही शुरू की जा सकती है और अपराध की जगह कोई भी हो, शिकायत दर्ज कराने में देरी नहीं होनी चाहिए और जो जीरो FIR है इसी अधिकार और सुविधा को मजबूत करती है।

0: लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में अभी आप ये गीत सुन रहे थे, फिल्म थी तकदीर। और रश्मि जी देखिए, अब बात करते हैं नागालैंड के एक ऐसे गांव की जिसने प्रकृति के संरक्षण को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना लिया।
1: जी, कौन सा गांव है ये?
0: भाई उस गांव का नाम है खोनोमा गांव।
1: अच्छा।
0: और अंगामी नागा समुदाय का ये गांव पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ जीवन शैली की मिसाल माना जाता है।
1: जी, यानी कि जब पर्यावरण संरक्षण की बात आती है तो भाई ये जो गांव है और यहाँ के जो वरिष्ठ हैं, जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने एक ऐसी मिसाल कायम की कि अब जो बाकी सारे गांव हैं उनके लिए भी अनुकरणीय है। तो होता क्या था प्रतिभा, यहाँ पर जो लोग हैं ना वो शिकार के लिए जाने जाते हैं
0: जी।
1: और शिकार करने जाते थे, पर बुजुर्गों को ये महसूस हुआ

0: इस अत्यधिक शिकार से जो वन्य जीवन वो प्रभावित हो रहा है, और वहां पर जो एक अति दुर्लभ पक्षी जो थे उनका जब शिकार हुआ तो वो बहुत ही उनको लगा कि ये अब रोकना पड़ेगा, और उन्होंने ये डिसीजन लिया, ये माना कि हमें ये रोकना चाहिए। और शिकार जो जब रोका गया तो फिर पेड़ों की व्यावसायिक कटाई पर भी रोक लगाने का फैसला किया गया, और उसके बाद जो है ये सिलसिला चल पड़ा।
1: बिल्कुल। और देखिए यहाँ पर जो है ना हॉर्नबिल नाम का जो एक पक्षी है उसकी प्रजाति एकदम विलुप्त हो गई थी जैसा कि आप बात कर रहे थे, तो जो बुजुर्गों ने ये जो एक इनिशिएटिव लिया, एक जो स्टार्ट किया, ये बहुत ही अच्छा किया। और देखो यहाँ की जो ना केवल उनका जो एफर्ट है कि प्रकृति संरक्षण, साथ ही साथ अगर हम खनोमा गांव की बात करते हैं तो यहाँ पर पारंपरिक सीढ़ीदार खेती और एल्डर पेड़ों का उपयोग भी प्रकृति के साथ तालमेल का जो एक बेहतरीन उदाहरण है। और जो खनोमा ने प्रकृति की रक्षा के साथ आजीविका के अवसर भी देखिए विकसित किए हैं। यहाँ पर इको टूरिज्म, होम स्टे, बांस के उत्पाद और वर्षा जल संचयन की जो भी जो शैली है उसने उनकी जीवन शैली को बहुत ज्यादा टिकाऊ बना दिया है।
0: जी
1: और जो खनोमा गांव जो है हम एक महत्वपूर्ण संदेश भी देता है।
0: हाँ, और यहाँ पर इसके अलावा जो ट्रेपोगन अभयारण्य है उसको विकसित किया गया है, और जो दुर्लभ जो वन्य जीव है, खासकर जो ब्लाइथ ट्रेपोगन है, इन पक्षियों का संरक्षण हुआ है। और जो आपने पारंपरिक एल्डर पेड़ों की बात की, तो सीढ़ीदार पारंपरिक होते
1: जी
0: ही हैं पेड़, तो उससे क्या होता है जो उर्वर रहते हैं खेत, और ये भी कोशिश की गई क्योंकि वहां पर बिल्कुल जिसे कहते हैं कि ऑर्गेनिक खेती की जाती है, तो उसमें भी बहुत मदद मिली। तो कुल मिलाकर सभी जो रहवासी हैं उन्होंने मेहनत करी और जो गांव को एक अच्छा पर्यावरण संरक्षण करते हुए उदाहरण बना दिया।

0: मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में अभी आपने गीत सुना, फिल्म थी महबूबा। और रश्मि जी, हमारे यहाँ जो प्रश्न था उसके जवाब आने लग गए हैं हमारे
1: जी,
0: पास।
1: बिल्कुल, और एक प्रश्न आप एक बार फिर बता दीजिए।
0: देखिए, हमारा जो श्रोताओं प्रश्न था वो भाषा से जुड़ा हुआ था कि आपको अपनी मातृभाषा के कौन से शब्द या उसकी कौन सी खासियत प्रिय है उसके बारे में आपको बताना है, और इसके अलावा कि आप अपने घरों में बच्चों को मातृभाषा से जोड़ने के लिए क्या कर रहे हैं। और हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com।
1: और जो पहला जो जवाब आया है वो नवीन भाटिया जी का मोतीनगर से आ गया है। वो कहते हैं सिंधी में हम बोलते हैं और सबसे अच्छा शब्द जो लगता है उन्हें वो है सुथो। शायद मैं सही उच्चारण किया है, बताएंगे वो, यानी अच्छा। और भाई वाह, बहुत अच्छा।
0: बिल्कुल। और देखिए, दूसरा जो जवाब आया है वो महेश अग्रवाल जी का आया है, और उन्होंने बोला है कि हमारी जो मातृभाषा है वो सदाबहार भाषा है, और यहाँ ये जो है हमारे रग रग में रची बसी हुई है, और कहीं ना कहीं हम इस भाषा का इस्तेमाल करते रहते हैं, चाहे वो घर हो चाहे बाहर हो। तो देखिए, ये बात तो है ही है कि सदाबहार है हमारी मातृभाषा, जो हम अपने घर में बोलते हैं बड़ों से, बुजुर्गों से, बच्चों से, उसका असर तो हमारे व्यवहार में, बोलचाल में नजर आता ही आता
1: और
0: है।
1: और गौरी शंकर जी जुड़ गए हैं हमारे साथ नागलोई से, और वो कह रहे हैं कि भाषा तो अपनी जगह सभी अच्छी है, लेकिन हमें अपने जानकारों से बात करना या परिवार के सदस्यों से बात करना, उसमें मातृभाषा का असर ही ज्यादा काम करता है, और भाषा से ही इंसान की खूबियों का पता चलता है। बिल्कुल सही कहा। इसके अलावा सुदर्शन मुखी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वे कह रहे हैं कि भाषा जो है संस्कृति, समाज और परिवार और देश की पहचान होती है। भाषा पढ़े लिखे और गैर पढ़े लिखे को भी आपस में जोड़ देती है, और हमें अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए। और आप उसके अलावा शुभकामनाएं उन्होंने लिखी हैं, और ये हैं सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से। और एक और मेल हमारे पास आया है, क्योंकि ये प्रश्न का जवाब तो नहीं है, परंतु आपने जो जीरो FIR के बारे में कहा था ना, प्रतिभा, तो डॉक्टर राजेश्वर राव का जो ये मेल आया है, उन्होंने कहा है कि अगर आप जीरो FIR को रजिस्टर करने से मना करते हैं तो ये एक कानूना अपराध होता है, और इसको चैलेंज किया जा सकता है उच्च अधिकारियों के द्वारा के पास। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि आप खुद एडवोकेट हैं, तो उसके बारे में उन्होंने अच्छी जानकारी हमें दी है। तो ऐसे ही हमारे पास से जुड़े रहिए और हमें मेल करते रहिए, हमें आपकी मेल्स का इंतजार रहता है श्रोताओं। लेकिन आप जो है हमारा प्रश्न दोबारा प्रतिभा आपको बता देती है, मेल एड्रेस फिर बता देती है, हमारा प्रश्न है
0: जी, हमारा प्रश्न मातृभाषा से जुड़ा हुआ है कि आपको अपनी मातृभाषा के कौन से शब्द या उसकी कौन सी खासियत ज्यादा प्रिय है, और उसके बारे में आपको हमें बताना है, और साथ ही साथ अपने घरों में आप बच्चों को मातृभाषा से जोड़ने के लिए क्या कर रहे हैं। हमारा मेल आईडी है fmgoldga@gmail.com।
1: और एक और मेल आ गया है प्रतिभा हमारे पास, उमेश जी, उमेश कुमार खयाला से लिख रहे हैं कि हमें अपनी मातृभाषा का वो शब्द प्रिय है जिसमें भावना हो और अपनों का प्यार हो और संस्कृति हो, उसमें अपनापन और सुकून तो होता ही है, और बच्चों को जो है हम अपनी मातृभाषा भी सिखाना बहुत जरूरी है, ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए।
0: बिल्कुल सही। बोलो।

0: अभिनेत्री फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना, आवाज थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।
1: और अब बात करेंगे, एक ऐसी जरूरी बात है ये जिसका जिक्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी किया था मन की बात कार्यक्रम में, और नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा था कि इस अभियान का जो लक्ष्य है वो ड्रग फ्री इंडिया है।

0: ने कहा कि युवा किसी न किसी तरह से जो ये नशे की लत का शिकार है, तो हमारा सामूहिक संकल्प ये रहेगा कि युवाओं की जो का जो स्वास्थ्य है, उनकी जो खुशी है और उनके उज्जवल भविष्य की दिशा में सामूहिक संकल्प होना बहुत आवश्यक है।
1: बिल्कुल। और देखिए, नशे की आदत सिर्फ युवा या उस व्यक्ति को अपने लपेटे में नहीं लेती, इसके दुष्परिणाम परिवार और समाज को भी झेलने पड़ते हैं। उन्होंने अपनी बात के दौरान उन लोगों की सराहना भी की है जो ड्रग्स के खिलाफ लोगों को जागरूक करते हैं और उनकी मदद के लिए आगे भी आते हैं।
0: और ये भी जरूरी है कि जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो अलग अलग भाषाओं में ऐसा रचनात्मक कंटेंट बनाएं, चाहे वो वीडियो हो चाहे पोस्ट हो, तो जो कि समाज को नशे के खिलाफ जागरूक कर सके। और क्रिएटिव जो कंटेंट है उसके फॉर्मल कैंपेन से ज्यादा उसका असर होता है और वो ज्यादा कारगर होता है।
1: बिल्कुल। और देखिए, लोगों और क्रिएटर से उन्होंने, मतलब प्रधानमंत्री जी ने ये भी अपील की है मन की बात में कि वे इस अभियान से जुड़ी अपनी कोशिशों और कहानियों को सोशल मीडिया पर हैशटैग नशा मुक्त युवा के साथ शेयर करें ताकि ये एक व्यापक जन आंदोलन बन सके।
0: और जो युवा संगीतकार है और लेखक हैं, उनसे ऐसे ड्रग फ्री जीवन जीने का और उसका संदेश देने वाले शक्तिशाली नारे और गाने बनाने के लिए आग्रह किया। और ये भी कहा है उन्होंने कि छात्र और जो थिएटर ग्रुप्स होते हैं ना, वो ऐसे छोटे छोटे दिल को छू लेने वाले नाटक लिखें और उसे प्रसारित करें, जिसमें कि ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनके साथ उनसे बाहर निकलने के रास्तों को दिखाया गया हो।
1: बिल्कुल। और देखिए, ये एक राष्ट्रव्यापी अभियान है जिससे हम भी जुड़कर अपना योगदान दे सकते हैं और किसी के जीवन को बेहतर और नशा मुक्त बनाने में हम मदद कर सकते हैं।

0: हरे रामा हरे कृष्णा इस फिल्म से. अभी आप ये गीत सुन रहे थे, आवाज थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की.
1: जी, और ये फिल्म भी प्रतिभा जो नशे से मुक्ति के लिए ही बनी थी, उसके जो दुष्प्रभाव होते हैं उसके बारे में पूरी कहानी बुनी गई थी. तो ये गीत आपने जो सुनवाया हमारे श्रोताओं को, और अगला जो विषय है वो क्या लेने जा रहे हैं आप?
0: देखिए, अगला जो विषय है वो पोषण से जुड़ा हुआ है, है ना. देखिए, जो बच्चे होते हैं, बच्चे देश का भविष्य, ये हम सभी जानते हैं और उनके स्वस्थ भविष्य की नींव जो जीवन के शुरुआती वर्षों में ही पड़ती है. पहले 6 वर्ष बच्चों के शारीरिक और मस्तिष्क के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं.
1: और ये जो बात आप इसलिए बता रही हैं क्योंकि आज का दिन बड़ा विशेष दिन है, उसके बारे में भी तो बताइए.
0: जी, आज का दिन जो है 9 सितंबर से जो है राष्ट्रीय पोषण माह 2026 की शुरुआत हो चुकी है.
1: जी, बिल्कुल.
0: तो इसलिए हम इस बारे में बात कर रहे हैं. और जो ये जो शुरुआत हुई है इस माह की, उसका जो उद्देश्य है वो बच्चों और माताओं के पोषण स्तर को बेहतर बनाना और समुदाय को पोषण संबंधी प्रयासों से जोड़ने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत शुरू किया गया है.
1: जी, और इस वर्ष की थीम है प्रतिभा, हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी. अभियान का जो उद्देश्य है वो आंगनवाड़ी केंद्रों को पोषण, स्वास्थ्य देखभाल और जो है प्रारंभिक बाल विकास के प्रभावी केंद्र के रूप में मजबूती से विकसित करना है. जो पोषण माह है इसके दौरान स्थानीय और कम लागत वाली पौष्टिक खाद्य सामग्री से तैयार जो व्यंजन होते हैं उन्हें प्रदर्शन करना भी. देखो, हमारा जो स्थानीय जो खाद्य पदार्थ हैं वो भी बहुत पोषण में मजबूत हैं, जैसे कि जो मिलेट्स हैं, यहाँ के मौसमी फल सब्जियां हैं, मेवे हैं, बीज हैं, दालें हैं, ये तो बहुत ही जिसे कहते हैं ना पौष्टिक हैं खाद्य पदार्थ. जो इनको दैनिक आहार में शामिल करने के लिए जागरूकता पैदा करना बहुत आवश्यक है, और साथ में जो है कम लागत से बनने वाली पौष्टिक खाद्य सामग्री को पोषण मेले और प्रोटीन रिच फूड अभियान जैसी गतिविधियों से जोड़ने की बहुत आवश्यकता है. और इसी को ये आयोजन इसी को अंडरलाइन करते हुए किया जा रहा है.
0: बिल्कुल. और देखिए, 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए गर्म पके भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता पर भी इस जो चलेगा जो महीना पूरा भर जिसमें गतिविधियां होंगी उसमें विशेष ध्यान दिया जाएगा इस बात पर भी. और साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर माताओं और अभिभावकों को पोषण और बाल देखभाल की जानकारी भी देंगे.
1: ये तो बहुत अच्छी बात है. देखिए प्रतिभा, जो हमारी भारतीय माएं हैं वो तो बड़े उनको चिंता रहती है कि बच्चों को जो है ताजा और गर्म भोजन मिले. हर एक माँ की यही चिंता रहती है कि चाहे कुछ भी हो मैं बच्चे को जो है ताजी अपने हाथ से बनी हुई रोटी खिला सकूं, है ना.
0: बिल्कुल.
1: तो ये पोषण से भी जुड़ी हुई है और जरूरत है कि ये जो बच्चों का सुपोषण है भाई सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि हम सभी की साझा जिम्मेदारी है. समझो.

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार को अभी आप सुन रहे थे, फिल्म थी जवार भाटा।
1: और भाई दाल रोटी खाओ और जिसे कहते हैं ना पोषण के गुनगाओ, हम तो ये कहेंगे।
0: जी
1: और एक नया इतिहास बना है भाई, एलेना ने बनाया है ये इतिहास, और शतरंज की दुनिया में ये इतिहास बना है, इसके बारे में प्रतिभा आप बताएं।
0: देखिए रश्मि जी, होता क्या है कि जब हम छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं ना, तो हम कहते हैं कि इनकी छोटी छोटी हरकतें, शरारतें, और वो जिस उम्र में बच्चे खेल कूद करना, प्यारी प्यारी बातें करते हैं, उस उम्र में जो ये एलेना है, उन्होंने शतरंज में एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। और देखिए, हम सभी जानते हैं कि शतरंज कितना पेचीदा खेल है ना।
1: बिल्कुल, और
0: दिमाग लगाना है और उसमें चालबाजियां सीखनी है कि कैसे आपको सामने वाले को हराना है।
1: जी, और क्योंकि एलेना जो है उसकी उम्र बहुत कम है भाई, वो सिर्फ 4 साल और 6 महीने की है वो लड़की, और ऐसी जिसे कहते हैं ना बिल्कुल नन्ही सी कली ने एक आधिकारिक FIDE रेटिंग हासिल करके दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी बन गई हैं।
0: बिल्कुल,
1: और इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने एलेना मिश्रा को 1432 की आधिकारिक ब्रिट रेटिंग दी है। भाई क्या बात है।
0: और देखिए, ये जो उपलब्धि है उन्हें प्रतिस्पर्धी शतरंज में शानदार प्रदर्शन के बाद मिली। और देखिए, इतनी कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रेटिंग हासिल करना अपने आप में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।
1: जी।
0: और देखिए, खास बात ये है कि 2022 या उसके बाद जन्म लेने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी है जिनकी आधिकारिक फीडे रेटिंग मौजूद है आज।
1: और प्रतिभा, मैं इनकी फोटो देख रही थी, बड़ी एक इनोसेंसी इनकी फोटोग्राफ थी, और मुझे लग रहा था इतनी छोटी सी बच्ची, मतलब ये लगता है कि अभी ये छोटी बच्ची क्या ही समझ पाएगी, लेकिन भाई ऐसी रणनीति बनाकर जो उन्होंने शतरंज खेली, भाई चाल ही तो चलनी होती है उसमें, तो ये कमाल की इस बच्ची ने शतरंज खेली और ये बड़ी रेटिंग लेकर आई, तो बहुत अच्छी बात है। उनकी उपलब्धि जो है उन्हें अपने आयु वर्ग में दुनिया की सबसे अलग और खास खिलाड़ियों में शामिल करती है।
0: बिल्कुल, देखिए आज वो दुनिया का उभरता हुआ सितारा बन गई, और जो विशेषज्ञ हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं ना, वो ये मान रहे हैं कि अगर वो इसी तरह से आगे बढ़ती रही तो आने वाले वर्षों में भारत को एक और बड़ी शतरंज खिलाड़ी मिल सकती है।

0: और इस बीच एक और मेल आ गई है, मुकेश सचवाल लक्ष्मीबाई नगर से कह रहे हैं कि हम भी शब्द का इस्तेमाल करते थे, वो उत्तर प्रदेश से हैं और दादरी क्षेत्र से कहते हैं, और कहते हैं हम छोटे बच्चों से इसी भाषा में बात करते हैं। इसके अलावा मंटू शर्मा कह रहे हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, सबसे प्रिय भाषा है, राजू अग्रवाल हरियाणा से, और समय कह रहा है
1: कि हम अपने श्रोताओं से ले अनुमति, लेकिन रश्मि जी ये हमारा वादा है अपने श्रोताओं से कि फिर किसी और दिन इसी वक्त पर हम अपने श्रोताओं से जरूर मिलेंगे बहुत सारे विषयों के साथ, बहुत सारी जानकारियों के साथ। लेकिन आप हमारे साथ इस मंच पर, इस कार्यक्रम पर हमेशा जुड़े रहिए, ऐसे ही हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। क्यों रश्मि जी?
0: जी बिल्कुल, और फिलहाल हम लेते हैं उनसे अनुमति और कार्यक्रम को समेटते हैं जिसका नाम है घर आंगन, और कहते हैं नमस्कार।
2: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा, आपका घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। यह अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करेंगे। प्रधानमंत्री ने 7 अक्टूबर 2001 को ही गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इन वर्षों में जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र के साथ सेवा की यात्रा को लगातार आगे बढ़ाया है।
1: जो आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास रहा है, एक बहुत बड़ा योगदान नेतृत्वकर्ता के रूप में उन्होंने दिया है। उनका सफर एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में जो प्रारंभ हुआ और आज देश के प्रधान सेवक के रूप में जो उन्होंने काम को आगे बढ़ाया, ये केवल उनके स्पष्ट विजन, उनके दृढ़ संकल्प, सामाजिक जीवन में लगातार गुणात्मक कैसे परिवर्तन आए, कैसे उनके जीवन में बदलाव आए, इसका प्रयास उन्होंने किया।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसनायका से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और श्रीलंका के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने दोनों देशों के विकास और लोगों की भलाई के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए भी मिलकर काम करते रहेंगे। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमलों से बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होती है और इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के काठमांडू में भारतीय फोरेंसिक टीम ने अपने काम में महत्वपूर्ण प्रगति की है। टीम अब तक 1400 से अधिक डीएनए नमूनों की जांच कर चुकी है और 378 डीएनए प्रोफाइल तैयार किए हैं। इस बीच भारत की संयुक्त तकनीकी टीम ने आज चिले में स्थित सुरंग में जल निकासी और कीचड़ हटाने का काम जारी रखा। इस्माइली समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम आज से 15 सितंबर तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। वे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत आए हैं। प्रिंस रहीम का कल उपराष्ट्रपति से मिलने का कार्यक्रम है। वे नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी ने आज बम्बई उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत की। इस वर्ष का विषय है हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी। जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 27वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली के संसद भवन परिसर में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन विक्रम बत्रा की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्कराज और अमरीका के बेन शेल्टन के बीच मुकाबला जारी है। वहीं अमरीका की जेसिका पेगुला ने महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। मौसम विभाग ने कल बिहार झारखंड ओडिशा पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले दो दिनों तक उत्तराखंड आंध्र प्रदेश तमिलनाडु पुदुचेरी कराईकाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आंधी तथा बिजली कड़कने की स्थिति बनी रहेगी। आज तटीय आंध्र प्रदेश केरलम और माही में गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Anuja Kumar. The BJP will launch a month-long Seva Sankalp Abhiyan from the 17th of this month on the occasion of the birthday of Prime Minister Narendra Modi to mark the completion of his 25 years in public life. Addressing a press conference in New Delhi today, BJP President Nitin Naveen said the Prime Minister will complete 25 years of his public service on the 7th of October, as on this day. In 2001, Mr. Modi began his tenure as the Chief Minister of Gujarat. The BJP President emphasized that under the leadership of Prime Minister Modi, India's progress has not been limited to development, but India's cultural identity and heritage have also been strengthened.
2: उन्होंने केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की बात नहीं।
3: He did not just focused on infrastructure and development. He also sought to change the way the people of this country think. When we look at his entire tenure, we can see that his decisions were not merely transformative in terms of governance and development, but also brought about a significant change in the lives of ordinary people. His 25 years of service and dedication have been marked by continuous efforts, a life rooted in values and committed governance. His contribution has given a new dimension to the history of democracy in the world.
2: दुनिया भर के लोकतंत्र के इतिहास को एक अलग परिभाषा के साथ सामने लाया है।
1: The Seva Sankalp Abhiyan will begin with organizing blood donation camp. Mr. Naveen informed that Seva Jyoti Kalash Yatra will also be taken out on the 7th of October, connecting villages and urban areas to express gratitude to the Prime Minister. He said that Seva Mera Yogdan program will be held from the 17th of this month to the 17th of October, with public participation under which various activities will be undertaken. Defence Minister Rajnath Singh held a meeting with President of Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, in Colombo today. During the meeting, both the leaders reaffirmed that as civilizational twins, close neighbours and maritime partners, India and Sri Lanka will continue to work together for the development of both the countries and also for the welfare of their people. In a social media post, Mr. Singh said that they also reaffirmed the work jointly to ensure the safety, security, peace and prosperity of the region. The External Affairs Ministry today stated that the Indian forensic team in Kathmandu has made significant progress in its work, processing more than 1,400 DNA samples so far. It said that the team has generated 378 DNA profiles till now. Meanwhile, the joint technical team from India sustained its dewatering and slush removal activities at the tunnel in Chilimi today. However, the slope of the tunnel and constrained access continue to pose challenges despite the use of innovative methods by the team. MEA said that

0: construction of the makeshift path for inducting heavy machinery for clearing the tunnel is also moving forward and expected to be complete in another 2 to 3 days. India has condemned the reported Houthi attacks on Saudi sovereign territory, especially the targeting of civilian and economic facilities. In a response to a media query on the attacks in Saudi Arabia, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said that such attacks that undermine regional security and stability and threaten freedom of navigation in the Bab el Mandeb were unacceptable. In Rajasthan, voting for the first phase of urban local body elections is being held today. Polling will continue until 6 p.m. Candidates have already been elected unopposed in 6 wards of the 4 municipal councils and 1 ward of a municipal corporation. Polling is being held in the municipal corporations of Alwar, Bharatpur, Bikaner and Bhilwara, besides several municipal councils, including those in Barmer, Jaisalmer, Karoli, Dungarpur, Pratapgarh, Chittorgarh and Nagaur. The IMD has forecast heavy rainfall over Bihar, Jharkhand, Odisha, West Bengal and parts of Northeast India till tomorrow. The Met Department said that thunderstorms and lightning conditions will continue over Uttarakhand, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and Andaman and Nicobar Islands during the next 2 days. Benchmark domestic equity indices were trading in the red during the afternoon session today. The Sensex shed 396 points to 75,181, while the Nifty declined 75 points to 23,560 when reports last came in. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। 1:10 हुआ है और वक्त हुआ है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम एक ही फिल्म का। एक ही फिल्म कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
2: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: आप सभी सुनने वाले, कार्यक्रम सुनने वाले श्रोताओं का स्वागत, खैर मकदम करती हूँ मैं आप सभी की होस्ट और दोस्त प्रीति त्यागी। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम है आप सभी का पसंदीदा एक ही फिल्म से, और जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर रोज आपके लिए एक फिल्म चुनकर लाते हैं, और उसी कड़ी में आज हम आपके लिए चुनकर लेकर आए हैं 60 के दशक की एक वो खूबसूरत फिल्म जिसने बहुत सी चीजों की जो धारणा थी उसको तोड़ा। जी हाँ, बात कर रहे हैं सन 1963 की फिल्म भरोसा के बारे में, जिसको निर्देशित किया था के शंकर ने। कलाकारों की बात करें तो गुरुदत्त साहब, आशा पारिक, महमूद, शोभा कोटे की अदाकारी से सजी ये फिल्म सिर्फ अपनी कहानी नहीं बल्कि अपने बेमिसाल संगीत और अपने बहुत से किस्सों के लिए जानी जाती है। तो आज का जो ये सफर है हमारा, उस सफर में हम करेंगे यही सब बातें, यही सब चर्चाएं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और लीजिए करते हैं शुरुआत इस कार्यक्रम की आशा जी की आवाज में इस खूबसूरत से गीत के साथ।

आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म के साथ और आज की फिल्म भरोसा। भरोसा, वो भरोसा जो कि भाई हर किसी की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। और दो दोस्तों के बीच में भरोसा, दो कोई भी रिश्तों के बीच में भरोसा जरूर होना चाहिए, क्योंकि जरा सी गलत फहमी होती है और पूरा रिश्ता डगमगा जाता है। और इसी गलत फहमी और इसी भरोसे के ऊपर आधारित है साल 1963 में आई फिल्म भरोसा। जी हाँ दोस्तों, इसी ताने बाने में बुनी गई है ये फिल्म, जहां पर एक दोस्त किसी काम से बाहर जाते वक्त अपनी सारी धन दौलत और अपनी बेटी सीता यानी कि आशा जी को अपने जिगरी दोस्त शिवचरण के पास छोड़ के चले जाता है। और जो शिवचरण है वो सीता को अपने बेटे रामा यानी कि गुरुदत्त साहब के साथ अपने ही बच्चे की तरह बड़ा करता है। वक्त बीतता है, रामा सीता बड़े होते हैं और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे भाई इसमें भरोसा कहाँ से टूटा या गलत फहमी कहाँ से आई, तो कहानी में आता है छोटा सा ट्विस्ट। जब रामदास वापस लौटता है तो वहां पर शिवचरण का जो लालची साला रसिक होता है यानी कि महमूद साहब होते हैं, वो थोड़ा सा जो स्थितियां हैं वो गड़बड़ कर देते हैं और कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं कि रामदास को लगता है कि उनके दोस्त शिवचरण ने उनकी जायदाद, उनके पैसे और उनकी बेटी के साथ धोखा किया है। और वहीं पर यही सब चीजों को या जो भी उनके जो रामा के पिता हैं शिवचरण, उन पर जो इल्जाम लगे उन सबको मिटाने के लिए रामा आगे आते हैं और अपने प्यार सीता को हासिल करने के लिए बहुत सी मुश्किलों से गुजरते हैं। और जैसा कि हमेशा होता है लास्ट में होती है फिल्म की हैप्पी एंडिंग, सच सामने आता है, सारे शक सारी गलत फहमियां दूर हो जाती हैं और वापस से जो भरोसा है वो बन जाता है। क्योंकि कहते हैं ना जो सच्चा भरोसा होता है ना वो कभी भी नहीं टूटता है, इसीलिए सच्चा भरोसा हमेशा बना के रखिए। फिल्म के बारे में जुड़ी और भी बातें हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं एक और ये खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों, बिल्कुल, कभी दोस्ती कभी दुश्मनी, यही सब होता है अगर आपका भरोसा टूटता है। वैसे आज हम बात कर रहे हैं फिल्म भरोसा के बारे में, और इस फिल्म में जो किरदार निभाया है अहम, वो है गुरुदत्त साहब। और वैसे जब भी हम गुरुदत्त साहब के बारे में सोचते हैं या उनका नाम हमारे दिमाग में आता है, तो सबसे पहले हमारे सामने एक जो इमेज बनकर आती है वो प्यासा फिल्म या कागज के फूल फिल्म में जो उन्होंने एक बहुत ही ज्यादा गंभीर और बहुत ही इमोशनल कैरेक्टर निभाया, हमें वो नजर आता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, जी हाँ दोस्तों, क्योंकि एक अभिनेता के तौर पर गुरुदत्त साहब ने हर तरह के रंगों का किरदार निभाया, और वही इस फिल्म में भी उन्होंने मस्ती भी की है, मजे भी किए हैं, और शायद ये गीत सुन के भी आपको लगा होगा। वैसे गुरुदत्त साहब के बारे में एक चीज और मानी जाती है कि वो डायरेक्टर खुद भी बहुत अच्छे हैं और वो बहुत अच्छे एक निर्देशक के रूप में माने जाते हैं, लेकिन ये पूरी फिल्म उन्होंने के शंकर साहब के साथ बनी। और के शंकर साहब दक्षिण भारत के एक काफी बड़े निर्देशक रहे हैं, और गुरुदत्त साहब उनकी काबिलियत से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना ये जो पूरा प्रोजेक्ट था वो उनको सौंपा और कहा कि भाई अब आप बनाइए, हम आपके साथ हैं। और जिस भरोसे के साथ गुरुदत्त साहब ने के शंकर के हाथ में ये फिल्म सौंपी थी, वो भरोसे पर पूरी तरह से सफल हुए, और इस फिल्म में उनकी जोड़ी आशा जी के साथ में भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत रही। वैसे ये फिल्म जो है ये एक चीज और साबित करती है कि गुरुदत्त साहब जो है वो सिर्फ ट्रेजेडी किंग या फिर बोले कि एक बहुत ही सैड फिल्मों के मास्टर नहीं है, बल्कि वो एक बहुत ही उम्दा और कमर्शियल अभिनेता हैं, जो कि दर्शकों के दिल में अपनी जगह बनाना अच्छी तरह जानते हैं। और वही ना, देखिए जो भी हम आपको गीत सुनवाने वाले हैं, वो गीत में आप देखेंगे किस तरह से गुरुदत्त साहब पर ये गीत जो है वो फिल्माया गया, और उनके चेहरे के जो भाव हैं वो वाकई में गुरुदत्त साहब की पूरी खासियत को बताते हैं, और किस तरह से वो बिना शब्द को बोले अपने चेहरे से पूरी जो कहानी है वो बयां कर देते हैं। तो लीजिए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

जी दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म के साथ और आज हम बात कर रहे हैं फिल्म भरोसा के बारे में। इस फिल्म में गुरुदत्त साहब ने जहां बिल्कुल अपने इमेज से अलग किरदार निभाया, वहीं दूसरी तरफ उनके साथ जो जोड़ी बनी वो आशा पारिक जी की बनी। और आशा पारिक जी को आपने देखा होगा, वो बहुत ही ज्यादा एकदम चुलबुले और बहुत ही ज्यादा हसमुख डांसिंग टाइप के जो उनके कैरेक्टर हुआ करते थे, बहुत चुलबुली होती थी वो अपने हर किरदार में। लेकिन इन सब के इतर इस फिल्म में उन्होंने बहुत ही संजीदा किरदार निभाया है। एक बहुत ही मैच्योर लड़की का किरदार इतनी शिद्दत के साथ उन्होंने निभाया कि हर किसी की आंखें नम हो गई उनके इस कैरेक्टर को देखकर। और दूसरी बात भाई, गुरुदत्त साहब के साथ उनकी ये जोड़ी पहली बार, यानी कि पहली बार ऐसा हुआ था कि गुरुदत्त साहब आशा जी के साथ में आए हैं और उन दोनों ने इन किरदारों को निभाया। और वाकई में जब ये जोड़ी स्क्रीन पर आई तो हर किसी ने उनको प्यार दिया और लोगों के भरोसे पर ये जोड़ी बहुत ही खूबसूरती के साथ में उतरी। और वैसे भी जो 60 का दशक था उस वक्त में आशा जी को हिट गर्ल कहा जाता था, उनको जुबली गर्ल बोलते थे। वो जिस फिल्म में होती थी उस फिल्म का हिट होना या जबरदस्त सफलता पाना ये साबित कर देता है कि आशा जी जिस फिल्म में होंगी वो तो हिट होगी ही होगी, क्योंकि वो सभी के

जी दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म के साथ और हमारी फिल्म है आज की भरोसा। भरोसा फिल्म जिसमें एक और ऐसा किरदार था जिसने इस फिल्म को हिट बनाने में पूरा साथ दिया। जी हाँ दोस्तों, वो किरदार था कॉमेडी के किंग महमूद जी का। जी हाँ दोस्तों, महमूद साहब जब भी पर्दे पर आते तो भाई उनके लिए तालियां बजने लगती और लोग ठहाके लगाने लगते। वो इस तरह से अपने किरदार में पूरी तरह से डूब जाते हैं ना, ये तो हर कोई जानता है। और ऊपर से इस फिल्म में शोभा खोटे के साथ जो उनकी जोड़ी बनी, वाह, उसने एक बार फिर से साबित कर दिया कि भाई उनकी जो कॉमिक टाइमिंग है ना, उसका कोई भी जवाब नहीं है। और साथ ही साथ उन दोनों की जुगलबंदी ने तो लोगों का दिल पूरी तरह से जीत लिया। फिल्म में जहां दूसरी तरफ गुरुदत्त साहब, आशा पारेख जैसे दिग्गज कलाकार थे, वहीं दूसरी तरफ महमूद साहब की जो अदाकारी थी, उनकी जब भी स्क्रीन पर एंट्री होती तो वो एक अलग और अपनी अलग पहचान, अपनी मजबूत पहचान के साथ आते। मतलब कह सकते हैं कि आप बड़े बड़े कलाकारों के रहते हुए महमूद साहब ने अपनी जो स्क्रीन प्रेजेंस है वो हर किसी को मनवाई। तो लीजिए सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत इसी फिल्म से।

विक्रम एक ही फिल्म के साथ और आपके साथ हूं मैं, आपके होस्ट और दोस्त प्रीति, और हमारे साथ जुड़े हमारे कुछ श्रोता जिनके संदेश हम शामिल कर लेते हैं। संदीप मकर, ज्योति मकर जी हमारे साथ जुड़े हैं, और ये जुड़े हमारे साथ कमल साहनी, पिंगावाला चौक, गोरैया, जलंधर, पंजाब से, नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग, पूना राम, कृष्णा देवांगन जी हमारे साथ जुड़े हैं पलारी छत्तीसगढ़ से, और ये जुड़े हमारे साथ सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह के साथ, पद्मा टॉकेज, नेपानगर, मध्य प्रदेश से, जलालाबाद वेस्ट से जुड़े हैं सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा के साथ, मेरठ कैंट से जुड़े हैं दिग्दर्शन और कविता गौड़, इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हैं पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक जी के साथ में, वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हैं, इसके अलावा गांव नथाना पंजाब से अरजिंदर छिंदा जी, जसवीर, जसी, सीता और गीता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कमलकांत गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं श्रीमती दीपा गुप्ता और रिमझिम गुप्ता के साथ पिपरिया से, इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये है मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, किरण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ग्राम नागर कोहरा, जिला नंदगांव, छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी, राजू, लल्ला, पूजा, प्रांजल, समीक्षा, बेबी, आराध्या साहू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गांव फना से जिला हसार से जुड़े हैं राजकुमार डूड़ी, प्रमोद कुमार डूड़ी, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान, पूजा परिहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत खूबसूरत जानकारी इन्होंने हम तक पहुंचाई है। लिखते हैं कि फिल्म में संगीत रवि का और गीतकार राजेंद्र कृष्ण, मोहम्मद रफी, आशा जी की आवाज में सभी नगमे थे जी। बहुत बहुत शुक्रिया खूबसूरत जानकारी के लिए। बागपत उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं संजय ढींगिया, नमन अपार ढींगिया के साथ, सुदर्शन मुखी, अनिता सिमरन जी हमारे साथ जुड़े हैं शांतिनगर सोनीपत से, और डीबी राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं नेहरू विहार दिल्ली से, पोटिया कला दुर्ग से हमारे साथ जुड़े हैं संजय कुमार साहू जी, और हीरामणि वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं दतरंगी भट्टापारा से, जनकपुरी सहारनपुर से जुड़े हैं जोन टिकेस्ट्रो, रोजी पाल और विल्लिस टिकेस्ट्रो के साथ में। और दोस्तों ये अगला संदेश है जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से योगेंद्र नायक, गीता, निहारिका और सुशांत नायक का। निसार अली जी का हमारे पास ये संदेश है धनोरी तेलीवाला उत्तराखंड से, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू के साथ ये हमसे जुड़े हुए हैं, नंदेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवानकर, निर्मला विशान नवानकर जी हमारे साथ जुड़े हैं, मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान ताड़े, आशीष मनहरिकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देवशंकर तामुरिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर के साथ, और ये जुड़े हैं डूंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से। अगला जो संदेश है उसको हम तक पहुंचाने वाले हैं ये है चूड़ी लाइन मुंगेली से छत्तीसगढ़, मोहम्मद इशाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल, अविराज हमारे साथ जुड़े हैं, ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं, रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा और समस्त विश्वकर्मा परिवार के सभी सदस्य, पश्चिम सिंह भूप चाईबासा झारखंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिवा गोप्रेम, कपिल, शिवांश, संगीता, लिपि और दीपाली गोप के साथ। तो दोस्तों ये थे वो सभी संदेश जिनके जरिए आप सभी हम तक जुड़े, हमसे जुड़े और इस कार्यक्रम से जुड़े, अपनी जो बातें हैं वो आपने हम तक शेयर की। और देखो बातों बातों में वक्त कितनी तेजी से गुजर गया कि पता ही नहीं चला। और हमारी जो आज की फिल्म भरोसा है जिसमें आशा जी, गुरुदत्त साहब, महमूद साहब की अदाकारी थी, वैसे दोस्तों इस फिल्म को देखकर भी और वैसे भी हम यही कहेंगे कि रिश्ते चाहे कोई भी हो उनकी सबसे बड़ी ताकत भरोसा होता है। और उम्मीद है आज का ये सफर, ये जो गीत हैं, ये सब आपके दिल को जरूर छुए होंगे। तो अब वक्त हो चला आपसे अलविदा कहने का, लेकिन जाइएगा कहीं नहीं क्योंकि 2:30 पर एक ही कलाकार कार्यक्रम के साथ एक बार फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप सभी से चाहूंगी विदा लेना, लेकिन छोड़े जाती हूँ आप सभी के लिए इसी फिल्म से एक और खूबसूरत सा गीत। तो मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।

0: ਬੱਚਾ ਨੇ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੈਪਟਨ ਬੱਤਰਾ ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਪੈਰਾ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ ਅੱਜ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੈਰਾ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਮਗਿਆਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਰਿਕਵ ਮਿਕਸਡ ਟੀਮ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਨ ਦੇ ਲਿਆਂਗ ਸ਼ੁਰੋਂਗ ਅਤੇ ਸ਼ੀਆ ਲਈ ਖਿਲਾਫ ਖੇਡਣਗੇ। ਪੈਰਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਮਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ੀਤਲ ਦੇਵੀ ਕੋਲ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਇਸਾਦਾ ਸਿਦਾਨ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ੀਤਲ ਦੇਵੀ ਪੈਰਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਮਿਕਸ ਟੀਮ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਮਗੇ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਏਗੀ। ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਲਈ 27ਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੁਵਾ ਸੰਵਾਦ ਮੁਕਾਬਲਾ 2025-26 ਦਾ ਨਾਮ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ 'ਚ 25 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਮੌਕੇ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਸੰਕਲਪ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਲੰਬੋ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਨੁਰਾ ਕੁਮਾਰ ਦਿਸਾਨਾਇਕੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਤਿਨਿਕੇਤਨ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।
1: ਆਦਾਬ, ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ। ਖਬਰੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਨੀਤਿਕਾ ਤਿਆਗੀ। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कोलंबो में श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा दिसानायकी के साथ मीटिंग की। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सिक्योरिटी, अमन और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इरादा किया। ब्रिक्स वज़राए खजाना और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की हतमी मीटिंग मुंबई में शुरू हो गई है। ख्वातीन और बच्चों की बहबूद की वजारत का कौमी तख्जिया महीने का आगाज वाराणसी में हुआ। बीजेपी वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अवामी जिंदगी में 25 साल मुकम्मल होने का जश्न मनाने के लिए इस महीने की 17 तारीख से एक माह तक जारी रहने वाला सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। और भारतीय मौसमियात महकमे ने अगले 24 घंटे के दौरान मुल्क के मशरकी और शिमाल मशरकी रियासतों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। अब खबरें तफसील से। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा दिसानायके के साथ एक मीटिंग की। इस मीटिंग के दौरान दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर जोर दिया कि मुश्तरक तहजीबी अख्तार के हामिल करीबी पड़ोसी और बहरी साझेदार के तौर पर भारत और श्रीलंका दोनों मुल्कों की तरक्की और अवाम की फलाह व बहबूद के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब सिंह ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने इस खित्ते में हिफाजत, सलामती, अमन व खुशहाली को यकीनी बनाने की खातिर मिलकर काम करने के अज़्म का इरादा भी किया। ब्रिक्स सरबराह इजलास से पहले ब्रिक्स वज़राए खजाना और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की हतमी मीटिंग इस माह की 9 से 10 तारीख के दौरान मुंबई में मुनक़िद हो रही है। इस साल ब्रिक्स फाइनेंस ट्रैक का मौजू है इस्तेहकाम, इख्तिरा, बाहमी तआवुन और पायदारी के लिए मिलकर काम करना। इससे कबल वज़राए खजाना और गवर्नरों की मुलाकात गुज़श्ता माह जयपुर में हुई थी। खजाना और कॉरपोरेट उमूर की मरकजी वजीर निर्मला सीतारमन ने मुंबई में हतमी मीटिंग से पहले ब्रिक्स फाइनेंस ट्रैक के कलीदी नतायज का जायजा लिया। नवा कौमी तख्जिया महीना आज वाराणसी के इंटरनेशनल रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में जोशोखरोश के साथ शुरू हुआ। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने खवातीन और बच्चों की बहबूद की मरकजी वजीर अन्नपूर्णा देवी के साथ खवातीन और बच्चों की बहबूद की वजीर मुमलिकत सावित्री ठाकुर और उत्तर प्रदेश सरकार के कई वजीरों की मौजूदगी में शमा रोशन करके इस प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए मरकजी वजीर अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि नवे कौमी तग्जिया महीने के जरिए तग्जिया से भरपूर और बाइख्तियार भारत बनाने का अज़्म है। ये मुहिम हर माँ की सेहत, हर बच्चे के तग्जिये और हर कुनबे के खुशहाली से मरबूत है। उन्होंने कहा कि खालिस और मुतवाजन ग़िज़ा सेहतमंद और खुशहाल मुल्क के लिए मजबूत बुनियाद है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए उत्तर प्रदेश के वजीर

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में 2014 से गरीबों, बच्चों, हामिला खवातीन और दूध पिलाने वाली माओं के लिए सेहत बख्श तगजिए को अव्वलीन तरजीह दी गई है। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी मराकज के निजाम में वाज़ेह तब्दीलियां आई हैं। आंगनवाड़ी मराकज अब सिर्फ तगजिए की तकसीम के मराकज नहीं है, बल्कि ये बच्चों की सेहत, तगजिए और इब्तदाई नश्वोनुमा के

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्र की सुरक्षा, शांति और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की वित्तीय मामलों पर अंतिम बैठक मुंबई में। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने वाराणसी में राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और अमरीकी ओपन टेनिस में बेन शेल्टन ने मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराकर पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिक्थानायके से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और श्रीलंका के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने दोनों देशों के विकास और लोगों की भलाई के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए भी मिलकर काम करते रहेंगे। ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन से पहले आज मुंबई में ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की अंतिम बैठक हो रही है। ये कल भी जारी रहेगी। इस वर्ष ब्रिक्स वित्तीय चर्चाओं का विषय है मजबूत नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। इससे पहले वित्त मंत्री और गवर्नर पिछले महीने जयपुर में बैठक कर चुके हैं। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने मुंबई में इस बैठक से पहले पिछली बैठकों के मुख्य निष्कर्षों की समीक्षा की। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के कथित हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले अस्वीकार्य हैं और इनसे बाब अल मंदीब जलडमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होती है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के काठमांडू में भारतीय फोरेंसिक टीम ने अपने काम में महत्वपूर्ण प्रगति की है। टीम अब तक 1400 से अधिक डीएनए नमूनों की जांच कर चुकी है और 378 डीएनए प्रोफाइल तैयार किए हैं। इस बीच भारत की संयुक्त तकनीकी टीम ने आज चिले में स्थित सुरंग में जल निकासी और कीचड़ हटाने का काम जारी रखा। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1365 हो गई है। बचाव दल 5326 लोगों की तलाश में जुटे हैं, जिनमें लगभग 589 विदेशी नागरिक शामिल हैं। अब तक 102 शव परिजनों को सौंपे जा चुके हैं। चीन की मीडिया के अनुसार इस आपदा में चीन के लगभग 43 नागरिकों की मौत हुई है, जबकि तिब्बत में 500 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। इस्माइली समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम आज से 15 सितंबर तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। वे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत आए हैं। प्रिंस रहीम का कल उपराष्ट्रपति से मिलने का कार्यक्रम है। वे नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने आशा व्यक्त की है कि हाल के कूटनीतिक प्रयासों से रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता फिर शुरू हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन ड्यूजारिक ने कहा है कि इन प्रयासों से तत्काल, पूर्ण और बिना शर्त युद्ध विराम का रास्ता खुल सकता है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र शांति के लिए किए जा रहे सभी सार्थक प्रयासों का समर्थन करने के लिए तैयार है। अमरीका और ईरान के बीच लगातार हमलों के कारण पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया है। इससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। अमरीकी सैन्य बलों ने ईरान के कच्चे तेल के 5 टैंकर नष्ट कर दिए हैं। अमरीका के अनुसार पिछले 2 दिनों में उसके एक युद्धपोत पर ईरान ने हमले किए थे। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें भी दागी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.news.com

0: newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आज अंतर्राष्ट्रीय रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य मंत्री भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि 9वां राष्ट्रीय पोषण माह स्वस्थ और सशक्त भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का अभियान है। उन्होंने कहा कि ये अभियान हर माँ के स्वास्थ्य, हर बच्चे के पोषण और हर परिवार की खुशहाली से जुड़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 से गरीबों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों में भी बड़े बदलाव किए गए हैं।
2: हमने पिछले 9.5 वर्ष में 70,000 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों को एक नया स्वरूप दिया है और हमने प्रायोरिटी ली है इसमें। राज्य वित्त आयोग हो, केंद्रीय वित्त आयोग का हो या राज्य के स्वयं का अपने बजट का पैसा, आंगनवाड़ी केंद्र उसकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए उसके निर्माण की। वहां पर बच्चों के लिए टॉयलेट की, शुद्ध पेयजल की, ये उसकी प्रायोरिटी का हिस्सा है। आज वहां पे बाल वाटिकाएं चलती हैं। खेल खेल में कैसे अक्षर ज्ञान और कैसे अंकों का ज्ञान बच्चे वहां प्राप्त करते हैं।
0: इस वर्ष पोषण माह का विषय है हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। ये अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करेंगे। प्रधानमंत्री ने 7 अक्टूबर 2001 को ही गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इन वर्षों में जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र के साथ सेवा की यात्रा को लगातार आगे बढ़ाया है।
3: जो आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास रहा है, एक बहुत बड़ा योगदान नेतृत्वकर्ता के रूप में उन्होंने दिया है। उनका सफर एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में जो प्रारंभ हुआ और आज देश के प्रधान सेवक के रूप में जो उन्होंने काम को आगे बढ़ाया, ये केवल उनके स्पष्ट विजन, उनके दृढ़ संकल्प, सामाजिक जीवन में लगातार गुणात्मक कैसे परिवर्तन आए, कैसे उनके जीवन में बदलाव आए, इसका प्रयास उन्होंने किया।
0: भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की प्रगति केवल विकास तक सीमित नहीं रही बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान और विरासत भी मजबूत हुई है।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम कह सकते हैं कि केवल विकास ही नहीं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भी जड़ों को मजबूत किया गया। आज अगर हम भव्य राम मंदिर की बात करते हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करते हैं, सोमनाथ की बात करते हैं, महाकाल कॉरिडोर की बात करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि देश के सांस्कृतिक धरोहर को पूरी तरह से सृजित और विकसित करने में उन्होंने पहल किया।
0: भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जब प्रधानमंत्री ने देश को संभाला उस समय भारत नीतिगत गतिरोध से जूझ रहा था और दुनिया की कमजोर मानी जाने वाली 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। श्री नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पूरे देश के लोगों की सोच को बदलने का भी प्रयास किया।
3: उन्होंने केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की बात नहीं की, उन्होंने इस देश के सोच को भी बदलने का प्रयास किया। उनके पूरे कालखंड को हम जब देख रहे हैं तो केवल युगांतकारी निर्णय ही नहीं हुए, आम लोगों के जीवन में बदलाव ही नहीं हुआ, आम लोगों के जीवन के सोच में भी बदलाव आया है। और 25 साल के ये सशस्त्र सेवा और समर्पण के जो उनके कार्यकाल रहे हैं, जो उनके बेदाग जीवन, लगातार शासन दुनिया भर के लोकतंत्र के इतिहास को एक अलग परिभाषा के साथ सामने लाया है।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना के बाद राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने नगर निगम के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद रहने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने दिल्ली में पीजी आवासों का निरीक्षण करने और वहां अनधिकृत निर्माण की जांच के साथ साथ

0: इमारतों से जुड़े रिकॉर्ड की भी जांच करने को कहा है। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी ने आज बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। मुंबई के लोक भवन में महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति त्रिपाठी बंबई उच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक में 18 स्थानों पर छापेमारी की है। इनमें राज्य के लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकीहोली, उनकी बेटी और लोकसभा सांसद प्रियंका जारकीहोली के आवास भी शामिल हैं। गुजरात विधानसभा का 3 दिन का मॉनसून सत्र आज गांधीनगर में शुरू हुआ। सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू हुई। इस दौरान सामान्य प्रशासन, राजस्व और पंचायती राज समेत विभिन्न विभागों से जुड़े तारांकित प्रश्नों पर चर्चा हुई। पुद्दुचेरी में तट्टान सावड़ी विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए आज नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर है। राजस्थान में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए। expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिनों तक उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आंधी तथा बिजली कड़कने की स्थिति बनी रहेगी। आज तटीय आंध्र प्रदेश, केरलम और माही में गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। गंगा, गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन और दूसरी नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: गंगा नदी का जलस्तर पटना के गांधी घाट में खतरे के निशान से 171 सेंटीमीटर, दीघा घाट में 109 सेंटीमीटर और हाथीदह में 165 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया। इधर मुंगेर, भागलपुर और कहलगांव में गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति बनी हुई है। तटबंधों पर दबाव की स्थिति को देखते हुए जल संसाधन विभाग और विभिन्न जिला प्रशासन की टीम लगातार निगरानी कर रही है। पटना, सारण, वैशाली, बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, जहानाबाद और अरवल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर राहत कार्य चलाया जा रहा है। 456 सामुदायिक किचन का संचालन किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए उसके निर्देशों को संबंधित एजेंसियों द्वारा प्रभावी ढंग से लागू करना जरूरी है। आयोग ने कहा है कि संबंधित एजेंसियों को उसके आदेशों का समय पर पालन सुनिश्चित करने के साथ निगरानी और कार्रवाई की व्यवस्था को भी मजबूत करना चाहिए। बेन शेल्टन ने अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में आज शेल्टन ने कड़े मुकाबले में मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराया। सेमीफाइनल में शेल्टन का सामना अमरीका के फ्रांसिस टियाफो से होगा। दोनों अमरीकी खिलाड़ी पहली बार किसी ग्रैंडस्लैम के फाइनल में पहुंचने के लिए मुकाबला करेंगे। वहीं जेसिका पेगुला ने महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 437 अंक गिरकर 75,140 पर, जबकि निफ्टी 89 अंक फिसलकर 23,547 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्र की सुरक्षा, शांति और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की वित्तीय मामलों पर अंतिम बैठक मुंबई में। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने वाराणसी में राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर से 1 महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और अमरीकी ओपन टेनिस में बेन शेल्टन ने मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराकर पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 1584 किलोहर्ट्ज, 684 किलोहर्ट्ज, एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी करगिल है। सामिन पेश खदमत है एनसीआरटी का स्पॉन्सर प्रोग्राम उमंग।

0: ही संबंध।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबको विमलेश का नमस्कार और जोहार। आज के उमंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। सुनते हैं आज का एक सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला सुरलकर जी ने। लिखते हैं, जीवन में वही आगे बढ़ता है जो अपनी गलतियों से सीखता है। अक्सर ठोकरें रास्ते की रुकावट नहीं बल्कि मंजिल की तैयारी का प्रशिक्षण होती हैं। धन्यवाद आप दोनों का इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। गांव ठाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी किरत ने लिखा है, आदरणीय विमलेश जी एवं अजीत जी सादर नमस्कार। 13 अगस्त 2026 को 1857 के गुमनाम वीर स्वतंत्रता सेनानियों की श्रृंखला के अंतर्गत वीर सावरकर जी के जीवन को जानने का अवसर मिला। आपकी ये प्रेरणादायी प्रस्तुति हमें स्वतंत्रता के मूल्य और हमारे वीरों के त्याग एवं बलिदान से परिचित कराती है। इतिहास के ऐसे प्रेरणादायी प्रसंगों को जन जन तक पहुँचाने के लिए आप दोनों का हार्दिक धन्यवाद और साधुवाद। आपको भी हमारा बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया जी ने लिखा है, आदरणीय अजीत जी और विमलेश जी, आज हमने उमंग कार्यक्रम के अंतर्गत ये भी जानिए मैं पिंगली वेंकैया जी के बारे में, अपने राष्ट्रध्वज के बारे में और आजाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस के बारे में बहुत कुछ जाना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और उमाराज, लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी। आप सबके संदेशों के लिए धन्यवाद। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इन दिनों हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं बहुत सारे प्रेरक प्रसंगों को। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी लेकर आए हैं जिसने न कोई बड़ी मशीन इस्तेमाल की, न उसके पास कोई बड़ी टीम थी। उसके पास था एक हथौड़ा, एक छेनी और एक अद्भुत संकल्प। आज के प्रेरक प्रसंग का शीर्षक होगा पहाड़ से भी ऊंचा आदमी। ये कहानी भी एनसीईआरटी की हिंदी की कक्षा 8 की पूर्व पाठ्य पुस्तक वसंत से संदर्भित है। ये कहानी है दृढ़ संकल्प के धनी दशरथ मांझी जी की। श्रोताओ, ये कहानी शायद आपने भी सुनी होगी, लेकिन हम इसे आज एक अलग परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करेंगे। उनकी कहानी शुरू होती है बिहार के गया जिले के गहलोर गांव से। श्रोता मित्रों, ये वो समय था जब आज के युग के उन्नत यातायात, संचार और चिकित्सा के साधन नहीं थे। उन दिनों में गहलोर गांव के लोगों को अस्पताल और बाजार तक पहुंचने के लिए एक बड़े पहाड़ के चारों ओर घूमकर जाना पड़ता था। रास्ता बहुत लंबा और कठिन था। कहा जा सकता है कि पहाड़ मात्र एक प्राकृतिक बाधा ही नहीं था बल्कि गांव के लोगों के जीवन में रोज की परेशानी भी था। दशरथ मांझी मजदूरी करते थे। एक दिन उनकी पत्नी फाल्गुनी देवी पहाड़ के दूसरे छोर पर काम कर रहे अपने पति दशरथ मांझी के लिए खाना लेकर जा रही थीं। पहाड़ पार करते समय वे दुर्घटनाग्रस्त हो गईं। चोट गंभीर थी, उन्हें समय पर चिकित्सा सहायता नहीं मिल सकी और उनकी मृत्यु हो गई। सचमुच बहुत दुखद घटना थी, लेकिन उस दुख ने दशरथ मांझी के भीतर एक ऐसा संकल्प पैदा किया जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। उन्होंने फैसला किया, मैं इस पहाड़ को काटकर रास्ता बनाऊंगा। और ये फैसला उन्होंने अकेले ही किया। उनके पास था एक साधारण हथौड़ा और छेनी। दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने पहाड़ पर प्रहार करना शुरू किया। एक दिन, दो दिन, एक

0: महीना, एक साल, समय बीतता गया। हो नहीं सकता मित्रों कि गांव वालों ने उनका मजाक नहीं उड़ाया होगा, लेकिन उन्होंने लोगों की बातों की चिंता नहीं की। वे रोज काम करते रहे। दशरथ मांझी जानते थे कि उन्हें एक ही दिन में पहाड़ नहीं काटना है, उन्हें बस हर दिन थोड़ा सा काम करना है। और श्रोता मित्रों, यही बात बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम कई बार बड़े लक्ष्य को देखकर डर जाते हैं। हम सोचते हैं इतना बड़ा काम कैसे होगा, लेकिन दशरथ मांझी ने सुनिश्चित कर लिया था कि वे अपने काम में निरंतरता बनाए रखेंगे। उन्होंने हथौड़ा उठाया और पहाड़ पर एक चोट की, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और फिर हजारों चोटें, लाखों चोटें, और धीरे धीरे वो पहाड़ टूटने लगा। श्रोताओं, आपको बता दें कि लगभग 22 वर्षों तक वे लगातार काम करते रहे। जी हाँ श्रोताओं, पूरे 22 साल। और उन्होंने अंततः पहाड़ के बीच से लगभग 110 मीटर लंबा और लगभग 9 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया। और जिस रास्ते के लिए लोगों को बहुत दूर घूमकर जाना पड़ता था, वो दूरी काफी कम हो गई थी। मुझे लगता है मित्रों कि आज के उमंग कार्यक्रम का यही संदेश है, विशेषकर विद्यार्थियों के लिए। हम सबके जीवन में कोई न कोई पहाड़ होता है, कोई न कोई कठिनाई अवश्य होती है, सीखने में, समझने में। और कई बार हम उस पहाड़ को देखकर सोचते हैं ये मेरे बस की बात नहीं, लेकिन दशरथ मांझी की कहानी बताती है एक दिन में पहाड़ नहीं टूटता, लेकिन रोज की एक चोट उसे धीरे धीरे बदल सकती है। यानी सफलता का रहस्य केवल शक्ति ही नहीं, दृढ़ संकल्प के साथ निरंतरता भी है। श्रोताओं, कई बार हमारी छोटी छोटी कोशिशें हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन यदि निरंतरता बनी रहे तो हम वर्षों बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि हमने बहुत लंबी यात्रा तय कर ली है। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का प्रेरक प्रसंग। आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, दृढ़ संकल्प के धनी दशरथ मांझी जी को पहाड़ खोदकर रास्ता बनाने में कितना समय लगा। प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं, दृढ़ संकल्प के धनी दशरथ मांझी जी को पहाड़ खोदकर रास्ता बनाने में कितना समय लगा। आप 8800440559 पर अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ, ताजा जानकारी के लिए आप इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी CIT NCERT को लगातार फॉलो करते रहें। NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनने या हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप NCERT ऑफिशियल YouTube को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। पहला कार्यक्रम है कम बैक सून। ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता पर आधारित है, जिसमें गीत के द्वारा यातायात के कुछ साधनों के बारे में जानकारी दी गई है।
1: Hello, children. How are you?
2: We are good, sir.
3: I am good, sir.
4: We are good.
1: How are your parents, brothers, sisters, and grandparents?
2: All are good.
1: All are well? That's nice. And what about your pets?
4: Sir, I have a dog.
5: Sir, we have a cat.
1: Okay. So how does a cat call?
2: Meow, meow, meow.
1: Do you think that pets are very special members of your family?
2: Yes, sir.
4: Sir, my pets are my friends.
5: They are very lovely.
3: My cat is very cute, sir.
1: So nice. Tell me, do you like traveling?
2: Yes, sir.
4: I like to go different places on my holidays.
5: I feel very happy when I go to my grandparents.
1: That's great. How do you go?
5: We go to see grandparents by bus.
1: That's very fine. Will any one of you tell me, how do you travel?
6: We travel by train, sir.
7: I like sitting on the window and to look outside.
1: Okay, anyone else?
8: Once we traveled by plane.
9: It was a great fun.

0: जी हाँ, जन जन होगा अब साक्षर उल्लास के साथ। आइए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के इस अभियान में बटाएं हाथ उल्लास के साथ। उल्लास भारत सरकार की एक अनूठी पहल।
1: उस रात ऑफिस से निकलने में तुबा हो गई थी, आंखें भी भारी हो रही थी, पर सोचा 15 किलोमीटर ही तो है, निकल जाता हूं। हाईवे पर एक ट्रक के पीछे चला गया। ट्रक के पीछे एक आयरन रॉड लगी थी, टेल लाइट दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे लगा कि वो सीधा जा रहा है, पर जैसे ही उसने ब्रेक मारे,
2: मुझे समझने में 1 सेकंड ज्यादा लग गया। नींद में गाड़ी चलाना और पीछे की रोशनी ना दिखना, दोनों ही गंभीर हादसे को बुलावा देना है।
3: थकान या नींद की अवस्था में वाहन चलाने से बचें। यात्रा के दौरान यदि थकान या नींद महसूस हो तो आगे बढ़ने के बजाय थोड़ी देर रुककर आराम करना सुरक्षित होता है।
4: और अब सुनते हैं कार्यक्रम रेलगाड़ी। इस कार्यक्रम में बच्चों को रेलगाड़ी, रेलवे स्टेशन और इससे जुड़ी कई बातों को बड़े ही मनोरंजक ढंग से बताया गया है। गीतों और ध्वनि प्रभावों का प्रयोग करके कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाया गया है।
5: बच्चों, रेलगाड़ी तो तुमने देखी होगी, है ना? हाँ, पहचान गए ना? रेलगाड़ी में होता है एक बड़ा सा इंजन और उसमें जुड़े होते हैं बहुत सारे डब्बे, तभी तो बहुत सारे लोग रेलगाड़ी में बैठकर आते और जाते हैं। और हाँ बच्चों, कितना मजा आता है जब तुम रेलगाड़ी का खेल खेलते हो, है ना? कैसे? तो आओ चलते हैं राजू और संजू के घर, जहां हो रहा है रेलगाड़ी का खेल।
6: रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली। रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली।
7: अरे संजू वो देखो, राजू तो पीछे छूट गया।
8: अरे हाँ, गाड़ी रुको गाड़ी रुको।
7: आ जाओ संजू, अब मुझे पकड़ लो, छूटना मत।
8: हाँ अब बन गई रेल।
6: रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली।
7: अरे अरे दादाजी आ गए, दादाजी आ गए।

0: दादाजी आप भी हमारे संग खेलिए ना।
1: अच्छा भाई, पर मैं तो तुम सबसे बड़ा हूं और भारी भी, तो ऐसा करते हैं तब मैं इंजन बन जाता हूं, हैं?
0: हाँ
1: ठीक
0: हाँ
1: है?
0: दादाजी ये ठीक ठीक
2: रहेगा।
1: तो
0: रहेगा।
1: चलो। चुप चुप
2: चली भाई रेल चली,
1: रेल चली भाई रेल चली, एक के पीछे एक आओ, रेल बनाओ रेल बनाओ, इंजन आगे डिब्बे पीछे, लोहे की पटरी पर खींचे, गांव गांव और शहर शहर में धूल उड़ाती, रेल चली भाई रेल चली, चुक चुक करती रेल चली, चुक चुक करती रेल चली। हा हा, अरे अरे भाई मैं तो थक गया, अब रेलगाड़ी रोकनी पड़ेगी।
0: हाँ दादाजी हम भी थक गए।
1: अच्छा तो फिर आओ यहाँ बैठते हैं।
0: अच्छा
1: अच्छा अब ये बताओ, तुम में से किसने सचमुच की रेलगाड़ी देखी है?
0: दादाजी मैंने देखी है।
1: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ
0: जब माँ के साथ नाना जी को लाने स्टेशन गया था तभी देखी है बस।
1: अच्छा तो चलो, मैं आज तुम लोगों को सचमुच की रेलगाड़ी
0: अरे
1: दिखाऊंगा।
0: वाह।
1: यही पास में तो है रेलवे स्टेशन।
0: हाँ आज तो बड़ा मजा आ जाएगा,
2: जाएगा।
0: हम लोग रेलगाड़ी देखेंगे। चलो चलो जल्दी चले।
2: चलो।
0: हाँ
2: हाँ।
1: अरे ओ रामू भैया, कहाँ जा रहे हो?
3: अरे दादाजी, स्टेशन जा रहा हूँ सवारी लेने को।
1: अरे भैया, तब तो हमारे बच्चों को भी साथ लेते चलो, रेलगाड़ी दिखाएंगे।
3: अरे हाँ हाँ दादाजी, आओ आओ बच्चों, आ जाओ बैलगाड़ी में चढ़
1: बैठो
3: जाओ,
1: बैठो, जल्दी
3: आओ
1: करो, जल्दी
0: आओ। हाँ
1: करो, बैठो
0: चलो
1: बैठो
0: चलो
1: बैठो। चलो चलो चलो, उतरो बच्चों, जल्दी करो, गाड़ी आने ही वाली है।
3: हाँ मैं
1: उतरो उतरो।
3: उतारता हूँ।
0: रानी जल्दी चलो नहीं तो गाड़ी चली
1: हाँ
0: जाएगी।
1: हाँ उतरो बेटी।
4: बच्चों, रेलवे स्टेशन पहुंचकर दादाजी और बच्चों ने सबसे पहले खरीदे प्लेटफॉर्म टिकट और फिर झटपट पहुंचे स्टेशन के अंदर।
0: दादाजी यहाँ तो बड़े सारे लोग हैं।
1: हाँ बच्चों, कुछ लोग तो रेलगाड़ी में चढ़कर आने वाले हैं और कुछ
0: अच्छा
1: जाने वाले हैं।
0: अच्छा तो ये बात है।
1: अच्छा बच्चों, वो देखो, वो है लोहे की पटरी, इसी पर रेलगाड़ी छुक छुक करके चलती है। बच्चों जल्दी जल्दी पीछे आ जाओ।
5: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बिलासपुर से रामपुर को जाने वाली सवारी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कुछ ही समय में आ रही है।
0: ये तो बहुत बड़ी गाड़ी है।
1: हाँ बच्चों, देखा, ये है सचमुच की रेलगाड़ी। वो सबसे आगे इंजन है और उसके पीछे डिब्बे।
0: दादाजी वो देखिए, एक आदमी हरी झंडी दिखा रहा है। वो हरी झंडी क्यों दिखा रहा है?
1: इसलिए क्योंकि हरी झंडी दिखाने से तो गाड़ी चलती है और लाल झंडी दिखाने से रुक जाती है।
0: अच्छा। अरे हाँ रेलगाड़ी तो चल रही। आइए दादाजी अब तो गाड़ी चली गई, सब लोग भी चले गए।
1: हाँ हाँ बच्चों,

डिब्बे पीछे लोहे की पटरी पर खींचे। इंजन आगे डब्बे पीछे लोहे की पटरी पर खींचे, गांव गांव और शहर शहर तक वो सबको पहुंचाती है, गांव गांव और शहर शहर तक वो

इंजन आगे डब्बे पीछे लोहे की पटरी पर खींचे। इंजन आगे डब्बे पीछे लोहे की पटरी पर खींचे, गांव गांव और शहर शहर तक वो सबको पहुंचाती है, गांव गांव और शहर

0: अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अब आपकी मित्र विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। दोपहर के 3 बजे हैं, हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात का आगाज होता है।

आप हमें सुन सकते हैं मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। सामीन आपको बता दें से कुछ ही देर बाद यानी 3:05 पर खबरें नशर की जाएंगी। 3:15 पर आप सुनेंगे फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। दिन में 3:30 हम पेश करेंगे महबूब खान के यौम पैदाइश के हवाले से उनकी शख्सियत और खिदमात के रेफरेंस में हिंदुस्तानी सिनेमा का पहला शोमैन, ये फीचर तहरीर डॉक्टर इरशाद परवेज की होगी। 4 से आप लुत्फ ले सकेंगे फिल्मी नगमों का। फिल्मी नगमों के प्रोग्राम जारी रहेगा 4:50 तक। 4:50 पर खबरें नशर की जाएंगी और 5 हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। तो सामिन ये था एक मुख्तसर तारुफ हमारे यहां से नशर होने वाले उन प्रोग्रामों का जो आज आप इस मजलिस में सुन सकेंगे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

मीडियम में भी 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। 3:05 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशर होंगी। ये

श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा दिसानायके के साथ एक मीटिंग की। इस मीटिंग के दौरान दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर जोर दिया कि मुश्तरक तहजीबी अकदार के हामिल करीबी पड़ोसी और बहरी साझेदार के तौर पर भारत और श्रीलंका दोनों मुल्कों की तरक्की और अवाम की फलाह बहबूद के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब सिंह ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने इस खत्ते में हिफाजत, सलामती, अमन व खुशहाली को यकीनी बनाने की खातिर मिलकर काम करने के अज़्म का इरादा भी किया। वजारत खारजा ने आज कहा है कि काठमांडू में मौजूद भारतीय फॉरेंसिक टीम ने अपने काम में नुमाया पेशरफ्त की है और अब तक 1400 से ज्यादा डीएनए नमूनों की जांच कर चुकी है। वजारत ने बताया कि टीम ने अब तक 378 डीएनए प्रोफाइल्स तैयार किए हैं। इसी दौरान भारत की मुश्तरका तकनीकी टीम ने आज चिले में सुरंग में पानी निकालने और कीचड़ हटाने का काम जारी रखा। ताहम सुरंग की ढलवान और महदूद रसाई की वजह से टीम को जदीद तरीके इस्तेमाल करने के बावजूद मुश्किलात का सामना है। वजारत खारजा ने कहा कि सुरंग की सफाई के लिए भारी मशीनरी अंदर ले जाने की खातिर आर्जी रास्ता बनाने का काम भी आगे बढ़ रहा है और तवक्को है कि यह काम मजीद 2 से 3 दिन के अंदर अंदर मुकम्मल हो जाएगा। नेपाल में अचानक आने वाले तबाहकुन सैलाब से मरने वालों की तादाद बढ़कर 1365 हो गई है। सैलाब से मुतासर इलाकों से मजीद लाशें बरामद हुई हैं। बचाव टीमें 5326 अफराद की तलाश के लिए लगातार मुहिम जारी रखे हुए हैं। इसराइल ने बरतानिया की जानिब से इसराइली बस्तियों से आने वाली अशिया पर पाबंदियां लगाने के जवाब में मशरकी यरूशलम में वाक बरतानवी कौंसलखाने को बंद करने का हुक्म दिया है। इसराइल के वजीर खारजा ने जिन इकदाम का ऐलान किया है उनमें मुतादिद बरतानवी एमपीज के इसराइल में दाखिले पर पाबंदी भी लगाई गई है। भारत ने सऊदी अरब के खुदमुख्तार इलाके खासतौर पर सिविलियन और इकतसादी मराकज को निशाना बनाने वाले हौसियों के हमले की मजम्मत की है। सऊदी अरब पर हमलों से मुतालिक मीडिया के एक सवाल का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस तरह के हमले इलाकाई सिक्योरिटी और इस्तेहकाम को जख्म पहुंचाते हैं। आज आलमी सतह पर तेल की कीमतें $100 फी बैरल से तजावज कर गईं। इसकी वजह मशरक़ वुस्ता में तनाजे में शिद्दत और मशरक़ वुस्ता से तवानाई की सप्लाई में मजीद रुकावट पड़ने का खदशा है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक ब्रेंट खाम तेल की कीमत में $2.15 या 2.2% का इजाफा हुआ और ये $100.07 फी बैरल तक पहुंच गई। इसी तरह अमरीका में वेस्ट टेक्सास खाम तेल की कीमत में $1.70 या 1.83% का इजाफा दर्ज किया गया और ये $94.73 फी बैरल हो गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमतों में पिछले महीने के अवाइल से 1/4 का इजाफा दर्ज किया गया। इसकी वजह अमरीका और ईरान के दरमियान 6 माह पुराने तनाजे के मुस्तकिल हल का नजर न आना है। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने कल तक बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मगरबी बंगाल और शिमाल मशरक के हिस्सों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 2 दिन के दौरान उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और अंडमान निकोबार जजायर में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का सिलसिला जारी रहेगा। महकमा मौसमियात ने आज साहली आंध्र प्रदेश, केरला और माहे में गर्मी और हब्स की सूरत हाल रहने की पेशगोई की है। बिहार में सैलाब की सूरत हाल में बेहतरी आई है क्योंकि गंगा, गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन और दीगर दरियाओं में पानी की सतह में कमी आ रही है। ताहम कई दरियाओं में पानी खतरे के निशान से अब भी ऊपर बह रहा है। सैलाब से मुतासर इलाकों में राहत और बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। दरियाए गंगा पटना में गांधी घाट के मकाम पर खतरे के निशान से 171 सेंटीमीटर ऊपर, दीघा घाट के मकाम पर 109 सेंटीमीटर और हाथीदह के करीब खतरे के निशान से 165 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है। मुंगेर, भागलपुर और कहलगांव में दरिया की सतह में इजाफा देखा जा रहा है जिससे नशीबी इलाकों में सैलाब का खतरा बढ़ गया है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। बीजेपी वजीर आजम नरेंद्र मोदी के आवामी जिंदगी में 25 साल मुकम्मल होने का जश्न मनाने के लिए इस महीने की 17 तारीख से 1 माह तक जारी रहने वाला सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। ब्रिक्स वजरा खजाना और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की हतमी मीटिंग मुंबई में शुरू हो गई है और वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कोलंबो में श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा दिसानायके के साथ मीटिंग की। दोनों रहनुमाओं ने खत्ते की सिक्योरिटी, अमन और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इरादा किया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हम आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर। पेश खिदमत है फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। तमाम सामईन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखलूस आदाब। प्रोग्राम की पहली पेशकश अमित कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में पुलिस पब्लिक फिल्म का यह नगमा, जिसे मौसीकी सजाया है राम लक्ष्मण ने।

और सामीली जब सुनिए अनुराधा पौडवाल और मंगल सिंह की आवाजों में राजेश रोशन की मौसीकी से सजाए नगमा फिल्म है बाहर आने तक।

सुनिधि चौहान और आनंद राज आनंद की आवाजों में आप सुन रहे थे कांटे फिल्म का ये नगमा, जिसे मौसीकी सजाया था आनंद राज आनंद ने। इसके साथ ही आज का मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेशे खिदमत है महबूब खान की शख्सियत और खिदमात के हवाले से डॉक्टर इरशाद परवेज का तहदीद करदा फीचर हिंदुस्तानी सिनेमा का पहला शोमैन। ये फीचर आज उनके यौम पैदाइश के मौके पर खिराज अकीदत है। ये फीचर का पहला हिस्सा है।

नामवर हिदायतकार और फिल्मसाज महबूब खान हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे फिल्मसाज और हिदायतकार हैं जिनकी फनकाराना अजमत का जमाना मोतरफ है।

गरीब खानदान में सन 1907 में आंखें खुली। महबूब के वालिद पुलिस में सिपाही थे और उनके दादा भी पुलिस के जमादार थे। उस जमाने में सरार और आसपास के कस्बों में कभी कभी सफरी सिनेमा वाले आते थे और अपनी गाड़ी की दीवार पर पर्दा लगाकर खामोश फिल्में दिखाया करते थे। इन टूरिंग थिएटर वालों के साथ मौसीकार और साजिंदे भी होते थे जो मनाजिर की मुनासिबत से धुने बजाते थे। कमसिन महबूब को खामोश फिल्मों की जादुई और तिलिस्माती फिजा बहुत भाती थी और वो वहां खींचे चले आते थे।

16 साल की उम्र में महबूब खान घर से भागकर मुंबई आ गए, लेकिन उनके बाप भी पक्के पुलिस वाले साबित हुए। उन्होंने थोड़े ही अरसे में मुंबई में अपने बेटे को ढूंढ निकाला और कान पकड़कर वापस गांव ले आए। उस जमाने के वालदैन हर चीज का एक ही इलाज तजवीज किया करते थे, इसलिए पास के गांव काशीपुरा की फातिमा बी नाम की एक कमसिन लड़की से उनकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती उनकी शादी कर दी गई।

0: लेकिन इस शादी से कोई फायदा ना हो सका। महबूब खान अपने आप में गुम रहने लगे। वो ना कुछ बोलते ना किसी की सुनते। ज्यादातर वक्त वो पास के बिली मोरा नामी मकाम के एक रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म की एक बेंच पर बैठे हसरत से मुंबई जाने वाली रेलगाड़ियों को बस घंटों तकते रहते।
1: वो सोचते रहते थे कि वो दिन कब आएगा जब उनके पास मुंबई का टिकट खरीदने के पैसे होंगे। इस्माइल जीवा अपने कंपार्टमेंट की खिड़की से रोज महबूब को प्लेटफॉर्म पर बैठे देखते थे। कई महीनों तक महबूब को उदास और तन्हा प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठे देखकर इस्माइल जीवा को एक दिन तरस आ गया। उन्होंने महबूब को बुलाया और कहा, तुम्हारा अज्म और इस्तिक्लाल बताता है कि तुम्हारा जैसा लड़का एक दिन कुछ न कुछ

बड़ा जरूर करेगा। क्यों जिंदगी खराब करते हो, जाओ और कुछ काम काज करो। महबूब ने कहा, इस्माइल चचा, मैंने अपनी जिंदगी का मकसद तय कर लिया है, मुझे बस फिल्मों में काम करना है, चाहे जान चली जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने शौक के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी है। चचा, आपने बीसियों बार मुझे अपनी रेलगाड़ी में मुफ्त सफर कराया है, एक आखिरी एहसान ये कर दीजिए कि बस एक बार मुझे मेरे ख्वाबों की नगरी पहुंचा दीजिए, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। इस्माइल जीवा तल्ख मुस्कुराहट के साथ बोले, तुम्हारा बाप पूरी जिंदगी मुझे माफ नहीं करेगा। वो कहते हैं ना कि पुलिस वालों की न दोस्ती अच्छी न दुश्मनी। फिर कुछ सोचकर बोले, चलो इतनी पुरानी दोस्ती के बाद तुम्हारे बाप को दुश्मन भी बना लेते हैं। कब जाना चाहोगे मुंबई? महबूब ने कहा, अभी इसी वक्त। इस्माइल चचा ने कहा, बैठ जाओ, और ट्रेन चल पड़ी। मुंबई पहुंचकर इस्माइल चचा ने महबूब को पहले गले लगाया और फिर कहा, देखो गरीब आदमी हो, मेरी कुल बचत ये 3 रुपए ये जेब में है, ये रख लो।

इस तरह दिल में सैकड़ों ख्वाब और 3 रुपए लेकर सन 1929 में महबूब अपने ख्वाबों के शहर मुंबई आ गए। याद रखने की बात यह है कि महबूब पढ़े लिखे नहीं थे और इस पर सितम बालाय सितम ये कि गुजराती जबान के सिवा कोई और जबान बोल ही नहीं सकते थे। मुंबई पहुंचकर महबूब खान ने जिंदा रहने के लिए पहले कई तरह के छोटे छोटे काम किए, लेकिन अपने देरीना ख्वाब की ताबीर तो उनका असल मकसद था। और ख्वाब की ताबीर का मरहला तब शुरू हुआ जब महबूब खान एक फिल्म कंपनी में मुलाजमत के लिए जा पहुंचे। अपनी लगन और मेहनत से उन्होंने इस फिल्म कंपनी के लोगों का दिल जीत लिया। अर्देशर ईरानी की कंपनी इंपीरियल स्टूडियो कहलाती थी, जिसमें एक जमाने में महबूब खान को 30 रुपए हर माह तनख्वाह मिला करती थी। महबूब खान ने अर्देशर ईरानी की कई फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट यानी के बहसियत एक्स्ट्रा काम किया। इंपीरियल स्टूडियो में एक मरहला वो भी आया जब महबूब मुल्क की पहली बोलती फिल्म आलमारा के हीरो बनते बनते रह गए।

बाद के दौर में यानी 1931 में एक मोड़ उनकी जिंदगी में तब आया जब महबूब खान और उनके कई दूसरे दोस्तों ने सागर मूवी टोन्स में काम करना शुरू किया और ये ताल्लुक उनके लिए एक फाले नेक साबित हुआ। देखते ही देखते महबूब खान ने फिल्मों की तकनीकी चीजों की जबरदस्त महारत हासिल कर ली। दूसरी जानिब वो फिल्म के तख्लीकी पहलुओं पर भी खातिर ख्वाह तवज्जो देते थे और फिल्म की कहानी और मंजरनामा खुद लिखा करते थे। उस जमाने में फिल्म इंडस्ट्री की बागडोर गुजराती फिल्मसाजों के हाथ में थी। तिजारती महारत रखने वाले ये लोग नहायत शरीफ, नेक और ईमानदार हुआ करते थे। उस दौर के नुमाया नाम थे सागर मूवी टोन के अम्बालाल पटेल, चमनलाल देसाई और चुन्नी भाई शाह वगैरह।

0: महबूब और फरीदून के साथ उस जमाने में एक और दोस्त सागर मूवी टोन में हुआ करते थे, जिनका नाम याकूब था। उन्होंने महबूब की बातों से तंग आकर एक दिन कहा कि अजमेर में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का मजार शरीफ है, वहां दिल से मांगने वालों की मुरादें पूरी होती हैं, तुम वहां चले जाओ और वहां जाकर होटल में कयाम करने के बजाय मजार के सहन में ही सोना। याकूब ने नौजवान महबूब खान को उसी वक्त 30 रुपए दिए और महबूब अजमेर के लिए चल दिए। एक हफ्ते के बाद महबूब वहां से लौटे तो अपना किस्सा कुछ यूं सुनाया।
1: रात के करीबन 3:30 बजे थे। मैं नमाज पढ़ने के बाद दरगाह के सहन में लंबे सफर की थकान से निहाल नंगे फर्श पर सो रहा था कि 3 पहर रात बीतने के बाद मुझे किसी ने ठोकर मारकर जगाया। मैं पता नहीं सो रहा था कि जाग रहा था। मुझे बस इतना याद है कि मुझे जगाने वाले ने कहा,
2: उठ, क्यों सोता है, यहां से जा, यहां क्या है तेरा नादान, जा, तेरा सब कुछ मुंबई में है, जा, वहीं मिलेगा तुझे जो तेरा है।
1: मेरी आंख खुल गई, देखा तो आसपास कोई नहीं था। मुझे ख्याल आया जरूर ये मेरे लिए ख्वाजा साहब की बशारत थी, इसलिए मैं बंबई के लिए

महबूब अजमेर से लौटे तो सागर मूवी टोन में काम करने वाले दोस्तों ने कहा, जल्दी जा अंदर, तू बगैर बताए गायब हो गया था, इस बात से सेठ बहुत नाराज है, कहीं ऐसा ना हो तुझे काम से निकाल दे, तू जाकर फौरन माफी मांग ले। महबूब जब वहां पहुंचे तो देखा कंपनी का मालिक अपने फिल्म डायरेक्टर पर गर्म हो रहा था। उसने गुस्से में कहा, तुम अपने को क्या समझता है, मैं एक एक्स्ट्रा को लेकर फिल्म बनाऊंगा लेकिन तेरे जैसे आदमी के साथ काम नहीं करूंगा, क्या समझता है अपने को। दरी असना महबूब वहां जा पहुंचे, सेठ सांस लेने के लिए रुका तो उन्होंने फौरन कहा, सेठ मेरे को माफ कर दो, मैं अजमेर गया था और इसी वजह से इतने दिन गैर हाजिर रहा। सेठ की कुछ समझ में नहीं आया कि ये लड़का कौन है। उसने पूछा, वो कौन है और क्या करता है। महबूब ने कहा, सेठ मैं एक एक्स्ट्रा हूं। सेठ जी जिस डायरेक्टर को डांट रहे थे उससे बोले, लो देखो मिल गया, ये एक्स्ट्रा है, मैं इसके साथ फिल्म बनाऊंगा, जा कोई स्टोरी सोच, तुझे फिल्म बनानी है।

कहा जाता है तब से फिल्म इंडस्ट्री में ये रिवायत चली आ रही है कि बड़े बड़े फिल्मसाज और हिदायतकार अपनी फिल्मों की कामयाबी के लिए ख्वाजा के दरबार में हाजिरी देते हैं और अपनी मुरादे पाते हैं। महबूब ने सेठ जी की कंपनी सागर मूवी टोन के लिए जजमेंट ऑफ अल्लाह अल मारूफ अल हिलाल नाम की फिल्म बनाई जो एक कामयाब फिल्म साबित हुई। कंपनी के मालिकान ने इस कामयाबी से मुतासिर होकर इस नौजवान को दूसरी फिल्म वतन बनाने के लिए दी। ये फिल्म भी कामयाब

जिस दौर में महबूब ने काम शुरू किया उस दौर में बुलंद बांग मुकालमों मार धाड़ और तिलस्माती और मस्नूई अंदाज की फिल्मों का दौर था। महबूब खान ने भी अपनी कई इब्तदाई फिल्में इसी अंदाज में बनाई, जिनमें जजमेंट ऑफ अल्लाह और अली बाबा 40 चोर जैसी फिल्में शामिल थीं, जिन्हें फ्रंट बेंचर्स के जौक की फिल्में कहा जा सकता है।

लेकिन इन फिल्मों में भी महबूब एक पसे पर्दा और बैनुस्सुतूर पयाम रखना नहीं भूलते थे। महबूब इन फिल्मों को अपने दूरस मकसद की तकमील का रास्ता और वसीला समझते थे। उनके नजदीक मस्नूई से मस्नूई फिल्म को भी एक बामकसद फिल्म बनाया जा सकता था। जैसे जैसे उनकी पकड़ नाजरीन की नब्ज पर बढ़ती गई, हकीकत पसंदाना फिल्मों की पेशकश का उनका रास्ता भी हमवार होता चला गया।

इन पे दर पे कामयाबियों से हौसला पाकर महबूब खान ने खुद अपनी प्रोडक्शन कंपनी खोल ली और उसके बाद एक से बढ़कर एक ऐसी बेमिसाल फिल्में नाजरीन को दी जो आज भी याद की जाती हैं। जल्द ही उन्होंने एक ही रास्ता नाम की एक फिल्म बनाई और उसके बाद कई ऐसी फिल्में तख्लीक की जिनमें हिंदुस्तानी

महबूब खान की फिल्मों का इब्तदाई लोगो आज भी लोगों को याद होगा। फिल्म के पर्दे पर सबसे पहले हंसिया हथौड़ी यानी कि हैमर और सिकिल पेश करने का काम भी महबूब ने ही अंजाम दिया। वो नजरियाती एतबार से खुद को मेहनतकश तबके से करीब तर तस्वुर करते थे और इसीलिए उन्होंने हैमर और सिकिल का लोगो अपनी फिल्मों के लिए मुंतखब किया। उनकी फिल्मों की शुरुआत इसी हंसिए और हथौड़ी के साथ होती थी और इसी के साथ ही रफी गजनवी की बारूब आवाज में आगा हश्र कश्मीरी का ये शेर सुनाई देता था, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। शायरों, अदीबों और फनकारों की जितनी कदर महबूब खान करते थे उसकी मिसाल मिलनी मुश्किल है।

कहा जाता है कि जब तनवीर नकवी ने अनमोल घड़ी के लिए ये गीत लिखा, आवाज दे कहां है, तो महबूब खान को यकीन ना आया कि 20 बरस का एक नौजवान ऐसा बाकमाल गीत लिख सकता है। उन्होंने नौशाद से कहा कि इस लड़के से कहो कि वो दूसरा गीत मेरे दफ्तर में आकर लिखे। इस पर नौशाद ने तनवीर नकवी को महबूब के दफ्तर में बुलाया, जहां महबूब ने उन्हें दूसरे कमरे में बिठा दिया। तनवीर नकवी ने 20 मिनट के अंदर अंदर दूसरा गीत लिख दिया, जिसके बोल थे, जवां है मोहब्बत, हसी है जमाना। महबूब खान ने यह गीत पढ़ा तो फौरन तनवीर नकवी को गले लगा लिया, और इस तरह तनवीर नकवी अनमोल घड़ी के गीतकार

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में आप सुन रहे थे आनंद बख्शी का लिखा गीत, जिसे मौसीकी सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म थी जीवन मृत्यु। और समझ लीजिए, अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में प्रोग्राम की अगली पेशकश, फिल्म है यादगार। नगमानिगार इंदिवर, मौसीकार कल्याण जी आनंद जी।

आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज़ों में आप सुन रहे थे कश्मीर की कली फिल्म का नगमा। नगमा निगार थे एस एच बिहारी, मौसीकार ओपिनियर। और लीजिए सामने आप सुनिए मुकेश की आवाज में प्रोग्राम की अगली पेशकश जिंदगी और तूफान फिल्म का नगमा, जिसे मौसीकी सजाए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

बीजेपी के सदर ने जोर देकर कहा कि वज़ीर-आज़म मोदी की क़यादत में भारत की पेशरफ्त सिर्फ तरक्की तक महदूद नहीं रही बल्कि भारत की सकाफती शनाख्त और विरसे को भी मजबूती मिली। उन्होंने मजीद कहा कि जिस वक्त जनाब मोदी ने मुल्क की बागडोर संभाली, भारत को मफलूज पॉलिसी का सामना था और उसका शुमार दुनिया की 5 कमजोर मईशतों में होता था, लेकिन आज भारत दुनिया में सबसे तेजी से तरक्की करने वाली बड़ी मईशत है। सेवा संकल्प अभियान खून हथिया कैंप के साथ शुरू होगा। जनाब नवीन ने बताया कि वजीर आजम को तशक्कुर का इजहार करने के लिए गांव और शहरी इलाकों को जोड़ते हुए 7 अक्टूबर को सेवा ज्योति कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि इस महीने की 17 तारीख से 17 अक्टूबर तक आवाम की शमूलियत के साथ सेवा मेरा योगदान प्रोग्राम भी मुनाकिद किया जाएगा। इस प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ सरगर्मियां अंजाम दी जाएंगी। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। आज आलमी सतह पर तेल की कीमतें $100 फी बैरल से तजावज कर गई। इसकी वजह मशरक़ी वस्ता में तनाज़े में शिद्दत और मशरक़ी वस्ता से तवानाई की सप्लाई में मजीद रुकावट पड़ने का खदशा है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक ब्रेंड खाम तेल की कीमत में 2.15 डॉलर या 2.2% का इजाफा हुआ और ये 100.07 डॉलर फी बैरल तक पहुंच गई। इसी तरह अमेरिका में वेस्ट टेक्सास खाम तेल की कीमत में 1.70 डॉलर या 1.83% का इजाफा दर्ज किया गया और ये 94.73 डॉलर फी बैरल हो गई। ब्रेंड खाम तेल की कीमतों में पिछले महीने के अवायल से 1/4 का इजाफा दर्ज किया गया है। इसकी वजह अमरीका और ईरान के दरमियान 6 माह पुराने तनाजे के मुस्तकिल हल का नजर न आना है। भारत इस महीने की 22 से 27 तारीख तक चीन के शंघाई में मुनद होने वाले 48वें आलमी स्किल्स मुकाबले में पहली मरतबा हुनरमंदियों के 11 नए जुमरों में हिस्सा लेगा। हुनरमंदी के फरोग और सनतकारी की वजारत ने कहा कि तकरीबन 70 अफराद पर मुश्तमिल टीम स्किल इंडिया 64 स्किल में से 63 में हिस्सा लेगी। नेपाल में अचानक आने वाले तबाहकुन सैलाब से मरने वालों की तादाद बढ़कर 1,365 हो गई है। सैलाब से मुतासर इलाकों से मजीद लाशें बरामद हुई हैं। बचाव टीमें 5,326 अफराद के लिए लगातार तलाशी मुहिम जारी रखे हुए हैं। इनमें कम से कम 589 गैर मुल्की शहरी भी शामिल हैं जो अब भी लापता हैं। अब तक

0: युद्ध नले सिर्फ 15% में उनला शुगर पर कंट्रोल में ले
1: तो
0: सौ ना ना 15 में माने शुगर पर माने कंट्रोल यो आमद ले गता ये लगभग 85% सो 85% में कौन शुगर ले कौन ला डायबिटीज माने कंट्रोल ना में ले सम सम आम तो चीज छरकले म्यू ने अगर चीची दवाई नाम सद ना ले खून से तो के गए दवाई ने नदले तो शुगर चोस पे ना शुगर गए 10 सुम शिक सो या मतलब ना खची तो माने 6 महीना सो मचोस मचोस पिन देते ले दवाई बगन ने नहीं नियोद ना ले शुगर चोस रेगुलर शुगर चोचेस वो जरूरी नोगाले कंट्रोल अगर 15% में सिर्फ शुगर पर कंट्रोल लू सत ना डायबिटीज से नाले दवाई बराबर नैन तेले सो वाकई में उनका कंट्रोल मचो है यू फिर मचा है या तो खुने डोज पर बराबर मने नैन ले या माने टेस्ट पर मचो है खुने टेस्ट चोचेस पो जरूरी नोगले टेस्ट चुचेस टाइम टाइम टेस्ट चुचेस टाइम टाइम तनचेस दवाई बो बराबर नेंचेस दवाई बो नेंते क्या शुगर बो कंट्रोल दो मिरुक ले तो तचेस जरूरी नहीं ले सो बस तेना जुगा 45% मिये माने अवेयर में ले ना शुगर दो मिरुक देते 45% ले बाकी देना लगभग आपका 55% लोगों को पता ही नहीं है कि मुझे शुगर है जितने तो 55% मी उन शुगर यू दिया ले उसमें शुगर है लेकिन उनको पता ही नहीं है कि मुझे शुगर है टेस्ट पाऊ मचोस मलता सो बस स्क्रीनिंग चोचेस जरूरी नोले दसंगता आमतौर एनसीडी ना प्रोग्राम फ्रीक्वेंटली गए पॉपुलेशन पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग अपार्ट फ्रॉम दैट फर्दर अपने लेवल पे स्टडी चोचेस आगे जाके तो इंडिया टाइप स्टडी ले तो इनशाला ICMR के थ्रू स्टडी चोचेस प्रिवेलेंस ऑफ डायबिटीज पॉपुलेशन यूटी लद्दाख ना सो तो इनशाला अभी तो पाइपलाइन ना देते स्टडी तो चोचेस अगर ते समय मचो ना तेने वाकई क्राइसिस प्रॉब्लम खुदा ना खास था कॉम्प्लिकेशन चिकसों पेशेंट खास कर पेशेंट उन कॉमन आ लेप दुखले या पेशेंट ला माने शुगर एक यूज मेद ना ले माने छू मांगे ड्रिंक्स नोकले कोल्ड ड्रिंक्स तो माने खची की माने कोल्ड ड्रिंक्स मांगपे थे प्यास बहुत लगे मैंने कोल्ड ड्रिंक मांगपे थे समझे खतरा के नोकला ऑलरेडी शुगर मांगपे क्यों नोगे यंग शुगर पेशेंट खुदा ना खास था कभी कभी पेशेंट खचिक बेहोश होते या माने जबरदस्त कॉम्प्लिकेशन का डायबिटीज डायबिटिक कीटू एसिडोसिस या हाइपर ऑस्मोलर स्टेट शुगर मन 500-600 लेवल का लिप चन सू कंडीशन पर पेशेंट खचिक तू कंडीशन लिप दू गया सो मसा ते अवेयरनेस मैचेस पे या स्क्रीनिंग मैचो चेस्ते सुनते नोगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,700 करोड़ रुपए से अधिक की 3 मल्टीट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में 400 गुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है। यहाँ पे फोर्थ लाइन बन, ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
0: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 भीड़भाड़ वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का निर्णय लिया है।
1: दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से वापस मुंबई, ये हो गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स हैं, उन कॉरिडोर्स की 4 लाइनिंग का काम चल रहा है। तो करीब करीब 2000 किलोमीटर ऐसे हैं जो ऑलरेडी 4 लाइनिंग हो चुके हैं।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन सेवा अगले वर्ष शुरू हो जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनर कुमार दसानायक से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के कल्याण और विकास के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। उन्होंने क्षेत्र की सुरक्षा, शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के उपायों पर भी चर्चा की। राष्ट्रपति दसानायक ने कहा कि श्रीलंका कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ किसी भी गतिविधि के लिए नहीं होने देगा। मुंबई में आज ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की अंतिम बैठक हो रही है। इस वर्ष ब्रिक्स वित्तीय चर्चाओं का विषय है मजबूत नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। इससे पहले वित्त मंत्री और गवर्नर पिछले महीने जयपुर में बैठक कर चुके हैं। वित्तीय आसूचना इकाई ने धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं करने पर 15 वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति सेवा प्रदाताओं को नोटिस जारी किए हैं। इनमें बिट यूनिक्स, डिजी फिनेक्स, पायोनेक्स, व्हाइट बिट, फिक्स फ्लोट और टू बिट शामिल हैं। वित्त मंत्रालय ने बताया कि

0: संस्थाओं को देश में अवैध रूप से संचालित एप्लीकेशन और यूआरएल हटाने का भी निर्देश दिया गया है। कीनिया के शिक्षा और तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम विकास मंत्रालय के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने आज पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के मानवाधिकार आयोग का दौरा किया। इस दौरे का उद्देश्य मानवाधिकारों को शिक्षा, युवा कौशल, प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण से जोड़ने के भारत के अनुभवों को साझा करना था। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आज अंतर्राष्ट्रीय रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। राजस्व आसूचना निदेशालय ने पिछले दो सप्ताह के दौरान देश भर में चलाए गए अभियानों में लगभग 740 किलोग्राम गांजा और चरस जब्त किया है। एजेंसी ने 13 लोगों को गिरफ्तार भी किया। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। यह अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में आज पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को जन सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला के अंतिम दिन आज भारत ने 2 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक जीते। अहमदाबाद में शीतल देवी ने कंपाउंड महिला व्यक्तिगत स्पर्धा तथा हरविंदर और भावना ने पैरा रिकर्व मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। भावना ने महिला रिकर्व, सरिता ने पैरा कंपाउंड व्यक्तिगत और स्वाति चौधरी ने W1 व्यक्तिगत वर्ग में कांस्य पदक जीता। पुरुष वर्ग में तोमन ने कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा का कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The Union Cabinet, chaired by Prime Minister Narendra Modi, has approved 8 multi-tracking projects of the Railways Ministry at a total estimated cost of more than 20,700 crore rupees. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav gave details of the decisions taken by the Union Cabinet during a media briefing in New Delhi today. Mr. Vaishnav said the Cabinet has approved 5 multi-tracking projects covering 17 districts across Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka and Telangana. Mr. Vaishnav said the government has also approved 3 multi-tracking railway projects at a total estimated cost of more than 10,700 crore rupees. These projects will cover 14 districts across West Bengal, Jharkhand, Odisha, Madhya Pradesh and Chhattisgarh and will add about 656 kilometres to the existing railway network. The minister further informed that the government has decided to undertake 4-laning and quadrupling of all 7 high-density railway corridors.
2: The 7 high-density railway corridors along with several other corridors that are expected to carry significant traffic in the future are being upgraded to 4-line. This also includes the Golden Quadrilateral, Delhi to Mumbai, Mumbai to Chennai, Chennai to Kolkata and Kolkata to Mumbai routes. In addition, its 2 diagonals, the Delhi to Chennai and Mumbai to Chennai routes, are also being quadrupled along with the Delhi to Guwahati corridor.
1: In reply to a question on Mumbai-Ahmedabad bullet train project, Information and Broadcasting Minister informed that the bullet train service will commence next year. He said the construction work on this corridor is progressing rapidly and initially the 100-kilometer section from Surat to Vapi in Gujarat will be open. Defence Minister Rajnath Singh called on President of Sri Lanka Anurakumara Dissanayake in Colombo today and discussed the entire spectrum of the multifaceted partnership between the two countries. During the meeting, the two sides reaffirmed their commitment to work together for development of both nations while working jointly to ensure the safety, security, peace and prosperity of the region. The two sides also exchanged Memorandum of Understanding, MOU, on upgradation of L-70 guns for the Sri Lankan Air Force and cooperation between National Cadet Corps and National Defence Colleges of both countries. During the meeting, President Dissanayake reiterated that Sri Lanka would never allow its territory to be used for any activities inimical to India's security interests. Ahead of the BRICS Leaders Summit to be held in

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: rangi businessun lasket tangmifia lenchik akashwani rocks yanti chonglenun localin ya fayuli thokikain akashwani stanchain customer unsa pilepi cups mangmu darine antes nang ya daftar ya hati kajuk senang bangyan chain akashwani ga kender chikika advertisement booking akashwani lokso channel unika advertisement tangchao samu dona ringin seyot booking befia call bazat 8700014242 ka
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस

0: मैं यूं बता जू कि मैं खन मैं खो माना बिल्कुल गरीब जरबाना मान फाइनेंशियली साधने युत खन जो था जू छने इंसान फाइनेंशियली कमजोर युत बस ज्यादा थले मता अगर सेहती तोरी कर देलुस पूरा इंसान एरियाली का तो मैं दू चो गरीब छ मता
1: बिल्कुल
0: सो
1: जो
0: मिन हाजू
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: छन मता हर जावे का मता दू उतार हो शाइन हाजू यंग मता अर्दमो बस दिस की मुनि कर मते फन खेल में फ्रलुक्स बचा दनु मत यरस्ती सोजू जैसे कि मता गासुचिया डिसेबल दुख तुख हा खो मिथुं चे दुख तुख डुलब मियन चे दुख तुख हा या दो मिन मा गा सूची का ऑर्फन जर दुख तुख या खा रोक्स पाखन सुमे दुख तुख या दो मिन मा बेवा जर ता जो आते गा सूची के मकबार गाले दुख तुख हा या खा रोक्स पाखन सुमे दुख तुख दो मिन मा आता सूची की तलाक सों से दुख तुख छा दो दे सोसाइटी तबकात गांव में फिलंग आता दी डिपार्टमेंट ना जो यो स्कीम यो जरे रे स्मॉल बसों जो कसा जो तना यंग निसरी सी स्पेराव यरां दू टीत पजू गसो गसो स्कीम का तो यो ये रस्मता दू मोर्चा जू डिपार्टमेंट ने अंडर चांद सिक्स स्कीम यो दोनों गसो गसो स्कीम का तो यो दू ची के रस सरपो बस मोर्चा कसा
1: कसा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट अंदर स्कीम नमा मामू जुया था मतलब सब पहला शुरू का दबाना था सांतेस ना लस पहले तंजे जुमाती माजूर शख्सियत सा
0: कसा
1: फिल्ला डिसेबल पर्सन जरिए जुमाते फिजिकली चैलेंज जरिए
0: कसा
1: या स्पेशली एबल जरिए कौन सा फिल्ला स्कीम पुका तो जर ना अच्छी लगा पेंशन स्कीम निजो जो कसम निजो दिया
0: कसा
1: अच्छी पुत सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम जो दो सेंटर के थ्रू डोल बदे स्कीम पु जो
0: बिल्कुल
1: दियो लजबत नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जर जो NSAP दो मिन मा यंग स्कीम जो जो अति स्टेट के थ्रू डोल बजो दो इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम जें जो या
0: कसा
1: दिस स्कीम निस्के नो फिजिकली चैलेंज पर्सन फिल्ला अलग पेंशन जक्स जो या कोई अलग
0: कसा
1: कंपोनेंट
0: बिल्कुल
1: यो दिस स्कीम निस्के नो छाना गा सूचे कि फिजिकली चैलेंज पर्सन का तो ना अगर नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के थ्रू अगर कोई ने अप्लाई का तो बने का तो खुआ सख बस जरूरी छा जो खुआ फिजिकली चैलेंज पर्सन सग फिलंग अति मेडिकल के थ्रू कार्ड चिल्ड्रन में जो है यूनिक
0: कसा
1: डिसेबिलिटी कार्ड जन चिक
0: कसा
1: दे कार्ड पर खुआ धन होमोशन जो है
0: कसा
1: लेकिन यहाँ जन्ना दी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम पेनो को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे मुश्किल होता है ना जन्ना
0: कसा
1: देनो को कौन फिजिकली देनो चैलेंज जो खान पो कोई परसेंटेज डिसेबिलिटी परसेंटेज करता ना 80% बस खिमो उम्र उस पर जो है
0: बिल्कुल
1: दियो मेन मगर अति स्टेट ये स्कीम में कंस्टाने का तो दिया 40% या 40% से अबव होना चाहिए जी दी हुई डिसेबिलिटी दियो का तो अगर को 40% बस खिमो कोई मजदूर का तो ना खो दे तहत नचे नची दी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट थ्रू को ₹1,250 पर मंथ देना तो पर जो है
0: कसा
1: पेंशन थोप चाहिए जो है
0: कसा
1: चाहे फिजिकली चैलेंज पर्सन से अगर पेंशन अलावा यार जन्ना अति दी इंडियन एलिमको जिंची के दिन ऑर्गेनाइजेशन जो जो दे थ्रू खुआ अच्छे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने वो या कोलोबरेट बसे खुआ असिस्टिव डिवाइस संगाचे से हर साल खुआ सब चुप जो दे अंग स्वास ना मेगो खान सागर ने मशीन यू मत या डुल बमियन खान सा का कांगमा लाखपा अति मजदूर सोसत खान सा का दिन आर्टिफिशियल लिम्स उमत कांगमा उमत लाखपा तक पजो
0: कैसा
1: दिया दी अलावा दें व्हील चेयर उमत या गतां दी गति शर्मा सा का गो सो स्केट पर पर जमोत खान सा डुल बमियन थी बस मियन कन स्टैन मार्गोस खान सा का खवा या बरका तो पजो मैं
0: कैसा
1: स्केट पर जमोत सो स्केट पे बेल्ट थप पत या पुक्समा जरहम जो नी केप थप पजो चने दे चोक्सु असिस्टेंस खिमो जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है सिर्फ पेंशन पुजा में जो पेंशन अलावा गाचेस दून सक हर साल ब्लॉक लेवल का दी नी देने जक से प्रोग्राम जक से या खुआ पहला नोटिफिकेशन तंग से खुआ गाचेस नंबरदार सक नंबर गाचे कॉन्टेक्ट चो जो या
0: कैसा
1: नंबरदार सक नंबर कॉन्टेक्ट चो से खुआ यूल यूल ला मी सक नंबर दी प्रिंट फोट चो से दी प्रोग्राम पे यूं चो से खुआ सक दी चो मदद बाजू या
0: कैसा कसा जो छ नेरेस मना सल्पो बसिंग ता दो मोल बसों जो इता दो मिन मंगाता सोशल पे पेंशन जर न मना बिल्कुल मशहूर हो दे
1: ये
0: जो
1: जुगा
0: दो
1: सना
0: माता मसा पता मना सिलखन मसिलखन यंगाता बुजुर्ग न लंग पता छ दो मिन मंगाता यंग मना फार्मासी स्कीम चिक दे थोम छ दो हाजू
1: ये
0: तेनु को खास कर नता दक्षा स्पेरा ताना ताना सीजन हिसाब मा स्पेरा का तो ताना दक्षा दा बक्सो ने सीजन इन छन
1: कसा
0: बक्सो न्यूलान से सीजन पे अनु माते देनु फन मिस पेरे का तो ताना का तो ता लद्दाख मैरिज असिस्टेंस स्कीम जिन छन ता इनती अंडर इनती डी डिपार्टमेंट अंडर स्कीम छन ता तो
1: ये
0: मचे दुखा
1: जुगा
0: जो छन यरे सिंगा ता mimans kunla di scheme under gas of mata avail di scheme pe avail by chain ya di scheme pe ganga so fan kick top chain di procedure puchiot ya di anu eligibility criteria gas of chain dun school res salpo bas mulche jo bakhshis
1: kasa bakhshis jo ngas snapa ngati.

0: Donde vas pinse a Kashwani Kargili, Sutorians Kyoto, y Antipo Kariskola, y Arespes Babasemos, y a Julianelli.
1: Ya, yo no le.
0: Darsat sarpa y antes nawang puski karpuna con asko yu sekion sot pin con kana ti sek na benyot pin. De ti son ambo ding achinomoni program potama ton inchala nan melus na yang yong mi achinomoni program nistrolika yantang na tuk tuk. De man pong achang saga izin chas de baza di ajou khoda nar sangmani fakayam.
2: अच्छे नमोने पिया दरें जिस दिन प्रोग्राम पलिंग ने चुटपिन प्रोग्राम प्रचुकन पन मिन जहरा बानो मीर मीडिया मोबाइल स्नैप एफएम चैनल उन्हें कर दिया आकाशवाणी कर गिलिन वास्तव खबर निशान सुकास्ता पुरी यंत्र खबर उन्हें इंटरेस्ट किन मज़ा

0: rangi business un lasket tang mifia lenchik akashwani rox yanti chonglenun local in ya fayuli thokain akashwani stanchain customer un sapile pis cups mangmu darine antes nang ya daftar ya hati kajuk senang bangyan chain akashwani ga kender chikika advertisement booking akashwani lokso channel unika advertisement tangchao samu dona ringin seyot booking befia call bazat 8700014242 ka
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर
2: 8700014242।
3: सुनो ना।
1: हाँ।
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ,
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
3: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
4: एलुमिस बनेनु है इंसानी रुख्स बचाई हजरत अली मुर्तजा अलैहिस्सलाम।
5: मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज लॉन्च कर रहा है 1 अगस्त से। क्या आप इसमें भाग लेना चाहते हैं? आइए सिर्फ 1 मिनट में जानते हैं कैसे। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर या एपल ऐप स्टोर से वेव्स ओटीटी ऐप डाउनलोड और इंस्टॉल करें। अब अपने मोबाइल नंबर या उपलब्ध किसी भी साइन इन विकल्प से रजिस्टर करें और लॉग इन करें। इसके बाद माय वेव्स सेक्शन में जाएं और अपना क्रिएटर प्रोफाइल तैयार करें। अब अवेलेबल प्रोग्राम में से जेम्स ऑफ इंडिया चुनें। अपना ओरिजिनल डिजिटल कॉन्टेंट अपलोड करें, सभी आवश्यक डिटेल्स भरें और सबमिट पर क्लिक करें एंड Your entry submitted successfully. Gems of India, आपकी जिले की कहानी, पूरे भारत की पहचान।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुँचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: नेह हल्के के डोनीपुरा इलाके में मुनक़िद एक तकरीब के दौरान कई मुस्तहिक और ज़रूरतमंद अफराद में इलेक्ट्रिक स्कूटर, कंप्यूटर, लैपटॉप, आलात समात और कुछ इलेक्ट्रिक व्हील चेयर तकसीम किए। इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए एमएलए मौसूफ ने कहा कि वो ज़रूरतमंद अफराद की मदद का यह सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। एक अहम पेशरफ्त के तहत क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर की तरफ से गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन में कागज़ के बगैर इम्तिहान मुनाकिद करने का एक इब्तदाई तजुर्बा कामयाबी के साथ बाअमल लाया गया है। यह जम्मू कश्मीर में आला तालीमी इदारों में इम्तिहानी अमल में जदीद लाने की अहम पहल मानी जा रही है। इस तर्ज पर यह इम्तिहान मुनाकिद करने के बाद सही और शफाफ इवेलुएशन करने में मदद मिलेगी। मरकजी काबिना ने एक मीटिंग के दौरान फोर लेनिंग के लिए 7 हाई डेंसिटी रेलवे नेटवर्क्स को मंजूरी दी है। काबिना मीटिंग के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए इत्तला नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इन 7 कॉरिडोर्स पर रेलवे का 40% ट्रैफिक चलता है और लगभग 2000 किलोमीटर की 4 लेनिंग का काम मुकम्मल किया जा चुका है। काबिना ने 10,700 करोड़ रूपये की मजमू लागत वाले 3 मल्टी ट्रैकिंग रेलवे प्रोजेक्टों को भी मंजूरी दी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने फिनटेक सफर को नई बुलंदियों तक पहुंचाया है, जिसकी बुनियादों में इख्तराइयत और सबकी शमूलियत शामिल है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का इफ्तिताह करने के बाद इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि यूपीआई भारत की फिनटेक की दास्तान की कामयाबी का एक अहम अंसर साबित हुआ है।
1: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
0: बीजेपी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के यौमे पैदाइश के मौके पर अवामी जिंदगी में उनके 25 साल मुकम्मल होने का जश्न मनाने के लिए इस महीने की 17 तारीख से एक माह तक जारी रहने वाला सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन ने कहा कि 2001 में गुजरात से अवामी खिदमत का आगाज करके वज़ीर-ए-आज़म आइंदा 7 अक्टूबर को अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर लेंगे। बीजेपी के सीनियर लीडर और मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर गुलाम अली खटाना ने मुल्क की बेमिसाल इक्तिसादी तरक्की की सताइश करते हुए कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दानिशमंदाना क़यादत में भारत नुमाया संगी मील अबूर कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने तरक्की हासिल करने के साथ साथ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मसनूई जहानत, कनेक्टिविटी, तवानाई, बैंकिंग और दीगर शोबों में नुमाया पेशरफ्त हासिल की है। ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जारी तकरीबात के सिलसिले में आज मसूदी मंजिल नरवरा में मौलूद मसूद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद हुआ। इस मौके पर उलमाए किराम ने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ गोशों पर रोशनी डाली। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से मनशात पर काबू पाने और मैदनियात की गैर कानूनी कानकनी पर रोक लगाने के लिए आज दिन भर कई सारी कार्रवाइयां अंजाम दी गई, जबकि फौजदारी के नए कवानीन और साइबर सिक्योरिटी से मुतालिक आम लोगों में जानकारी पैदा करने के कुछ प्रोग्राम भी मुनक्किद किए गए। तफसीलात के मुताबिक बारामूला पुलिस ने मैदनियात की गैर कानूनी कानकनी और तरसील में मुलवस 6 गाड़ियां जब्त करके कसूरवारों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इसी दौरान हंदवाड़ा पुलिस ने भी इसी तरह की एक कार्रवाई में 4 गाड़ियां जब्त कर ली हैं। हंदवाड़ा पुलिस ने जरूरी कागजात न होने की पादा में 2 गाड़ियों को जब्त किया है। उधर बारामूला पुलिस ने नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत जिले के पटन इलाके में खुदरो भंग की एक बड़ी मकदार को तबाह कर लिया। इस मुहिम में मकामी लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अवंतीपुरा और कावनी इलाके में भी पुलिस की तरफ से खुदरो भंग की कुछ मकदार तबाह कर दी गई। यहां मकामी लोगों के साथ साथ मुतलका लंबरदारों और महकमे एक्साइज के अहलकारों ने भी इस मुहिम में हिस्सा लिया। हंदवाड़ा पुलिस ने हायर सेकेंडरी स्कूल मागाम और मकाम हंदवदपुरा में फौजदारी के नए कवानीन से मुतलिक एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस प्रोग्राम में तालिब इल्मों ने जबरदस्त दिलचस्पी दिखाई। साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल लिटरेसी के बारे में एक प्रोग्राम जिला पुलिस अवंतीपुरा की जानिब से भी मुनक्किद किया गया। इसी दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस ने हंदवाड़ा में एक साबिक मिलिटेंट को गिरफ्तार करके हाईब्रिड मोड में चलाए जाने वाली एक टेरर मॉड्यूल को तशतज बाम किया है। जिला इंतजामिया कुलगाम की जानब से 2026 के विश्व अदबी और तजारती मेले के सिलसिले में इंतजाम को खत्मी शक्ल दे दी गई है। डिप्टी कमिश्नर शहजाद आलम ने इस सिलसिले में मुनक्किद एक मीटिंग के दौरान मुतल्लिकीन को हिदायत दी कि वो इस 2 रोजा फेस्टिवल को कामयाब और बायसर बनाने के लिए लगन और तनदेही के साथ काम करें। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक कश्मीर वादी में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि जम्मू डिवीजन में कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 32.4 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 15.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 34.3 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलू आफ्ताब सुबह 6:10

0: मिनट और गुरु आफ्ताब शाम 6:45 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ। एक वक्फे के बाद आप सुनिए तबसरा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।
1: सामीन आदाब, आज का तबसरा लेकर मैं सुहेल भट्ट हाजिर। बनीनो इंसान की नशोनुमा और बका के जिमन में ज़िराअत के शोबे को मरकजी किरदार की हैसियत हासिल है। एक तरफ जहां काश्तकारी दुनिया का कदीम तरीन पेशा है, तो दूसरी तरफ इस सरजमीन पर बसने वाले लोगों की आबादी का बड़ा हिस्सा इसी पेशे के साथ वाबस्ता है। ये पेशा इंसानी तहजीब की बुनियाद है और हजारों सालों से ये पेशा लोगों को खुराक और जरिए माश मैसर कराता आया है। ज़िराअत के लिए जमीन की तैयारी, बीज बोना, पौधे लगाना, आबपाशी, खाद का इस्तेमाल, कीड़ों और बीमारी पर काबू पाना, फसल की बुवाई से लेकर कटाई तक देखभाल, स्टोरेज, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग समेत कई तरह की सरगर्मियों की एक वसी रेंज शामिल है। काश्तकारी के शोबे को मुख्तलिफ अकसाम में बांटा जा सकता है, मसलन गुजर बसर की खेती, तिजारती काश्तकारी, नामियाती काश्तकारी और जरई कारोबार वगैरह। आलमी मईशत में ज़िराअत के शोबे का एक बहुत ही अहम किरदार है। ये शोबा खुराक फराहम करने के साथ साथ आमदन और तिजारत के ज़िमन में भी एक अहम किरदार अदा करता है। तहम ज़िराअत की वजह से माहौलियात पर नुमाया असर पड़ता है, जैसे जमीन का इस्तेमाल, आबी वसाइल, हयातियाती तनव और आब हवा की तब्दीली। ज़रई शोबे की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए इस शोबे को मुख्तलिफ पॉलिसियों और जवाबित के ताबे रखा गया है, जिनका मकसद पायदार और मसावी तरक्की को फरोग देना, गुरबत और भूख पर काबू पाना, गजाई तहफ़ गजाइत को बेहतर बनाना और माहौलियाती तब्दीली और हयातियाती तनव के नुकसान जैसे आलमी मसाइल के साथ निपटना है। जहाँ तक हमारे मुल्क भारत की बात है, यहाँ की आबादी का 80% हिस्सा देही इलाकों में रहता है, जहां लोगों का बुनियादी पेशा काश्तकारी है। इस पेशे के ऊपर हमारी मईशत का एक बहुत बड़ा हिस्सा मुनहसर है। हमारे जीडीपी का 17-18% हिस्सा इसी शोबे के साथ वाबस्ता है और मुल्क के कामगारों का 45% इसी शोबे के साथ जुड़ा हुआ है। भारत दूध और दालें पैदा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, जबकि यह गंदम, चावल, मेवाजात और सब्जियां पैदा करने वाला दूसरे नंबर का मुल्क है। इस शोबे की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए मरकजी और रियासी सरकारों ने ज़िराअत की तरक्की को अपनी अवलीन तरजीहात में शामिल रखा है। मरकजी सरकार ने पैदावार को बढ़ाने और फिर इसका बेहतर और मुनासिब दाम किसानों के लिए यकीनी बनाने के लिए कई स्कीमों को मुतारिफ कराया है, जिनमें माली इमदाद और पैदावार का सही दाम यकीनी बनाने के लिए कई स्कीमें भी शामिल हैं। इसके अलावा वक्त पर खाद और अद्वियात की फराहमी भी हुकूमत के लिए एक इंतहाई अहम मौजू है। पीएम किसान और किसान क्रेडिट कार्ड के अलावा ई नैम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए किसान अपनी फसलों को ऑनलाइन फरोख्त कर सकते हैं। सरकार की इन कोशिशों की बदौलत मुल्क के ज़िराअत को काफी फरोग मिला है और हम आलमी सतह पर इस शोबे में एक कायदाना किरदार अदा करने के अहल हुए हैं। जहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात है, यहाँ भी ज़िराअत का शोबा खुराक और रोजगार फराहम करने के हवाले से सरफहरिस्त है। हमारे यहाँ भी आबादी का एक बड़ा हिस्सा काश्तकारी और बागवानी के शोबे के साथ वाबस्ता है और हमारी इक्तिसादियात का दारोमदार काफी हद तक ज़िराअत और बागवानी के शोबे के ऊपर है। सरकार की कोशिशों और काश्तकारी को साइंसी बुनियादों पर उस्तवार करने के नतीजे में आज इस शोबे को काफी फरोग मिला है। यही वजह है कि रवां साल के दौरान हमारी फसलें वक्त से पहले ही तैयारी के मरहले में दाखिल हो चुकी हैं और उम्मीद है कि इस साल हमें एक बेहतर और भरपूर फसल हासिल होगी। बागवानी के शोबे में भी जदीद तरीन साइंसी तरीकों के इस्तेमाल और बेहतर दवाइयों की दस्तियाबी की बदौलत हमारी मेवा सनत को काफी फरोग मिला है। स्टोरेज की बेहतर सहूलियात की बदौलत बागवानी के शोबे से वाबस्ता लोगों के माली हालात तवक्को से बढ़कर बेहतर हुए हैं। तहम ज़िराअत हो या बागवानी का शोबा, दोनों में अगरचे काफी सुधार आया है, लेकिन इन दोनों शोबाजात को मजीद बेहतर बनाने के लिए अभी और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। किसानों को वक्त पर मयारी खाद और अद्वियात फराहम कराना हुकूमत की जिम्मेदारी है। इस हवाले से किसानों की शिकायत है कि उन्हें इस जमीन में मुश्किलात का सामना है। जरूरत इस बात की है कि सरकार की तरफ से ठोस और नतीजा खैज इकदाम उठाए जाएं। इसके अलावा तहकीक के शोबे को मजीद फाल बनाने और तहकीकी काम में सूरत लाने की भी जरूरत है, ताकि एक बेहतर और बीमारियों से पाक फसल की काश्त को यकीनी बनाया जा सके। इस हवाले से हमारे यहाँ सुकास्ट की सूरत में जो इदारा मौजूद है, वो तहकीक के शोबे में संजीदगी से काम करके एक अहम किरदार अदा कर सकता है और इस तरह हम ज़िराअत और बागवानी के शोबों में आलमी मयार और जदीद तरीन साइंसी तरीकों पर उस्तवार कर सकते हैं और जम्मू कश्मीर को मजीद खुशहाल बना सकते हैं। इसके साथ ही आज का तबसरा खत्म हुआ। इजाजत दें, शब बखैर।
2: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान। अपनी तरह

मीडियम वेव 684 किलोहर्ट्ज़, मीडियम वेव 1584 किलोहर्ट्ज़ और एफएम चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी करगिल है। पेश खदमत है प्रोग्राम फौजी भाइयों के लिए।

0: फौजी भाइयों के लिए अपना मनपसंद प्रोग्राम यानी फौजी भाइयों के लिए लेकर हम फिर हाजिर खिदमत हैं। प्रोग्राम सुनने वाले सभी सामेईन को हमारी ओर से प्यार भरा आदाब।
1: अंजलि, हमारी तरफ देखो। पति पत्नी ना सही, हम दोस्त बन के तो रह सकते हैं, और दोस्ती का पहला असूल यह होता है बराबरी का हक। और हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो आपकी मर्जी के खिलाफ हो, और आप भी ऐसा कोई काम नहीं करना जिसे हमें दुख पहुंचे।

अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू उदित नारायण औरल का याज्ञिक को फिल्म दटकर में ये गीत। आइए सुनते हैं उदित नारायण औरल का याज्ञिक को फिल्म कसूर में ये नगमा, बोल है समीर के।

0: अभी आप सुन रहे थे बॉम्बे फिल्म फेयर की गीत हरी हरन और कविता कृष्णा मूर्ति की आवाज़ों में, बोल महबूब के और तरस बनाई थी ए आर रहमान ने। आइए सुनते हैं उदय नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में धड़कन फिल्म का ये गीत।
1: बस बहुत हो गया झूठ, तुम लोग सब झूठ बोल रहे हो। न जाने कितने दिन, कितने महीने, कितने साल झूठ पे झूठ पे झूठ बोलते आए और मैं चुपचाप बर्दाश्त करता रहा, सिर्फ इसलिए कि एक दिन तुम्हारी ये बेवजह नफरत मोहब्बत

मोहब्बत में बदल जाएगी, लेकिन अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अंजलि झूठ नहीं बोल रही, मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूं, लेकिन यह बात मानने को तैयार नहीं कि इसके चरित्र में दाग है।

अभी आप सुन रहे थे दटकन फिल्म का एक गीत, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में। आइए सुनते हैं अलका याग्निक और विनोद राठौड़ की आवाज़ों में दीवाना फिल्म का एक गीत।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया।
2: मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर,
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
3: RBI कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर,
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: RBI कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: अभी आप समाप्त कर रहे थे प्रोग्राम फूजी भाइयों के लिए मीडियम वेव्स और एफएम चैनलों पर। ये आकाशवाणी करगिल की आवाज है। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में खबरें रिले करेंगे। रिले का इंतजार कीजिए।
1: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। भारत और श्रीलंका ने L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। श्रीलंका ने भरोसा दिलाया कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ नहीं होने देगा। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के हमलों की निंदा की, कहा ऐसे हमले बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में आवाजाही के लिए खतरा। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण संपन्न, भारत ने 4 स्वर्ण सहित 15 पदक जीते। और जूनियर एशिया कप हॉकी में भारतीय पुरुष टीम सेमीफाइनल में और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें 3 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं में 10,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में 400 गुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, यहाँ पे 4th लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6,528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
0: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 भीड़भाड़ वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का निर्णय लिया है।
1: रेलवे के मॉडर्नाइजेशन का जो काम पिछले 12 वर्षों में चल रहा है उसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कंप्लीट ओवरहॉलिंग जो रेलवे की हो रही है, कंप्लीट मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, उसके प्रोजेक्ट्स दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से वापस मुंबई, ये हो गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स हैं, उन कॉरिडोर्स की 4 लाइनिंग का काम चल रहा है। तो करीब करीब 2000 किलोमीटर ऐसे हैं जो ऑलरेडी 4 लाइनिंग हो चुके हैं।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन सेवा अगले वर्ष शुरू हो जाएगी।
1: वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट है, उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे। अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के आज के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। श्री मोदी ने बताया कि 5 रेलवे परियोजनाएं दक्षिण भारत में बेहतर रेल संपर्क को बढ़ावा देंगी और इससे लाखों लोगों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं से रेलवे नेटवर्क बढ़ेगा और छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में संपर्क बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और संचालन की लागत भी कम होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability.

0: sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनोर कुमार दिसानायक से मुलाकात कर भारत श्रीलंका के बीच बहुआयामी साझेदारी पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने श्रीलंकाई वायुसेना के लिए L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के राष्ट्रीय कैडेट कोर तथा राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालयों के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया। भारतीय रक्षा बलों द्वारा निर्मित 3 बेली पुलों का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। बैठक के दौरान राष्ट्रपति दिसानायक ने कहा कि श्रीलंका कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ किसी भी गतिविधि के लिए नहीं होने देगा। श्री सिंह ने इस बैठक को सफल और सार्थक बताया।
4: आज मेरी हेज एक्सलेंसी द प्रेसिडेंट के साथ भी बहुत ही फ्रूटफुल और प्रोडक्टिव मीटिंग भी उनके साथ हुई है और उनका विजन और लीडरशिप हमारे दोनों देशों के बीच मैं समझता हूं कि पार्टनरशिप को और स्ट्रेंथन करने में को कंट्रीब्यूट करेगी।
3: श्री राजनाथ ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री हरणी अमरा सूर्या से भी मुलाकात कर विकास सहयोग शिक्षा तथा भारत श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया। भारतीय वायुसेना का 8वां विमान 35 टन राहत और बचाव का सामान लेकर नेपाल के काठमांडू के लिए रवाना हो गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस मदद में NDRF का सामान, बचाव कार्य के उपकरण, फोरेंसिक का सामान और सेना की टीम के लिए जरूरी सामान शामिल है। मंत्रालय ने कहा कि भारत अपने राहत और बचाव कार्य जारी रखे हुए है। मुंबई में आज ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की अंतिम बैठक हो रही है। इस वर्ष ब्रिक्स वित्तीय चर्चाओं का विषय है मजबूत नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। इससे पहले वित्त मंत्री और गवर्नर पिछले महीने जयपुर में बैठक कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। यह अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर शुरू किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि सेवा मेरा योगदान कार्यक्रम 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक जन भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विकसित भारत 2047 के संकल्प को लेते हुए हम भारत को आगे बढ़ाने में, देश को एक साथ लेकर चलने में और प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र रहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उस मूल मंत्र को इस कार्यक्रमों में हम लोगों ने लाने का प्रयास किया है।
3: महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लंदन में 3 बड़े सम्मान दिए जाएंगे। उन्हें हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कॉमनवेल्थ पब्लिक लीडरशिप रिकॉग्निशन और हाउस ऑफ कॉमन्स में स्टेट्समैनशिप अवार्ड दिया जाएगा। ये सम्मान उनके जन केंद्रित सुशासन और लोक कल्याणकारी योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री मांझी लाड़की बहन योजना, शासन अपल्यादारी और मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना के लिए दिए जा रहे हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने कहा है कि जिला प्रशासन ही विकास, सुधार और परिवर्तन के असली इंजन हैं। श्री चौधरी ने यह बात महिलाओं के लिए सतत आजीविका का निर्माण विषय पर आधारित कौशल मंथन के उद्घाटन सत्र में कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
6: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
2: ये आकाशवाणी है। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के कथित हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले अस्वीकार्य हैं और इनसे बाब अल मंदीब जलडमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होगी। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने दावा किया है कि उसने फारस की खाड़ी में 2 अमरीकी जहाजों और 8 तेल टैंकरों पर हमला किया है। ईरान ने यह कार्रवाई अमरीकी सेना द्वारा उसके 5 तेल टैंकरों को नष्ट किए जाने के जवाब में की है। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कल से और बढ़ गया है। पर्शियन गल्फ और उसके आसपास सैन्य ठिकानों के साथ साथ व्यापारिक जहाजों पर भी हमले हुए हैं। अमेरिका का कहना है कि ईरान के मिसाइल हमले के बाद उसने 5 ईरानी तेल टैंकरों को नष्ट कर दिया। वहीं ईरान का दावा है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास 2 अमेरिकी नौसैनिक जहाजों और 8 तेल टैंकरों पर हमला किया। UK MTO ने पुष्टि की है कि गई रात कई व्यापारिक जहाजों पर हमला हुआ। इस बढ़ते तनाव का असर तेल की कीमतों पर भी पड़ा है। अगर जहाजों की आवाजाही और तेल के सप्लाई लंबे समय तक प्रभावित रहे तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। मनीष शिवा, आकाशवाणी न्यूज, दुबई।
2: थाईलैंड के गृह मंत्रालय ने कहा है कि साधारण पासपोर्ट धारक भारतीय पर्यटकों को वीजा अनिवार्यता से छूट दे दी गई है। ये छूट पर्यटकों को थाईलैंड में 30 दिन तक रहने की अनुमति देती है। ये छूट इस महीने की 15 तारीख से लागू होगी। गंगा, गंडक, कोसी, पुनपुन और सोन समेत अन्य नदियों के जलस्तर में कमी आने के बावजूद बिहार के लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। एक रिपोर्ट।
4: आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार 14 जिले पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय, बक्सर, समस्तीपुर, मुंगेर, कटिहार, लखीसराय, खगड़िया, पूर्णिया और अरवल जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। प्रभावित क्षेत्रों में 793 सामुदायिक रसोई केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा 15 राहत शिविर भी संचालित किए जा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की सुविधा के लिए 1872 नावों का परिचालन हो रहा है। राहत और बचाव कार्य में NDRF की 10 और SDRF की 27 टीमों की तैनाती की गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
2: अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण आज संपन्न हो गया। भारत ने 4 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 15 पदक जीते। प्रतियोगिता के अंतिम दिन आज भारत ने 2 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक हासिल किए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम जूनियर हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। चीन की मोकी में आज भारतीय पुरुष टीम ने कप्तान अनमोल इक्का के शानदार 6 गोल की मदद से चीनी ताइपे को 15-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। वहीं भारतीय जूनियर महिला टीम ने अपने आखिरी पूल मैच में चीन के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। अब क्वार्टर फाइनल में कल भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
5: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में आज गिरावट आई और वे लगभग 3 महीने पहले के स्तर पर आ गए। सेंसेक्स 813 अंक गिरकर 74,764 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 204 अंक नीचे आकर 23,432 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 1 डॉलर की तुलना में 28 पैसे गिरकर 95.11 रुपये पर बंद हुआ।
2: भारत इस वर्ष 21 से 23 अक्टूबर तक नई दिल्ली में 7वें एग्री वोल्टेक्स विश्व सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। भारत और श्रीलंका ने L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। श्रीलंका ने भरोसा दिलाया कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत की सुरक्षा हितों के खिलाफ नहीं होने देगा। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के हमलों की निंदा की। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण संपन्न। भारत ने 4 स्वर्ण सहित कुल 15 पदक जीते और जूनियर एशिया कप हॉकी में भारतीय पुरुष टीम सेमीफाइनल में और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: इतवार तक गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने का इम्कान है। बलूचिस्तान में मजीद दो अफराद पाकिस्तानी फोर्सेज के हाथों जबरी गुमशुदगी का शिकार हो गए हैं, जिसे बलूच अफराद की गुमशुदगी और मुतासिर खानदानों को दस्तियाब मालूमात को लेकर तश्वीश एक बार फिर नुमाया हो गई है। बलूचिस्तान पोस्ट के मुताबिक 23 अगस्त को रात तकरीबन 3 बजे पाकिस्तानी फोर्सेज ने मस्तूंग में अली बलोच को मुबैना तौर पर हिरासत में ले लिया। इसके बाद अली बलोच का कोई पता नहीं चल सका। एक दूसरे वाकये में शकील बलोच के अफराद खानदान ने कहा कि उसे क्वेटा के किल्ली गौहराबाद से 16 अप्रैल की आधी रात उसके मकान से उठा लिया गया। उसके कुंबे ने पाकिस्तानी ISI और इंसदाद दहशतगर्दी महकमे CTD पर उसकी गुमशुदगी का इल्जाम आयद किया है। भारत ने आज अहमदाबाद में आलमी पैरा तीरंदाजी सीरीज के तीसरे मरहले में आखिरी दिन 2 सोने और 4 कांसे के तमगे जीतकर अपनी मुहिम खत्म कर दी। पैरालंपिक में 2 बार तमगा जीतने वाले हरविंदर सिंह और मौजूदा आलमी चैंपियन और आलमी नंबर 1 शीतल देवी ने भारत के तमगों की मुहिम की कयादत की। शीतल देवी ने खवातीन के कंपाउंड इनफरादी मुकाबले में सोने का तमगा जीता। उन्होंने कजाकिस्तान की आयजदा सईदान को एक सनसनीखेज शूट ऑफ में शिकस्त देकर यह तमगा हासिल किया है। हरविंदर सिंह ने भावना के साथ मिलकर रिकर्व मिक्स टीम मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में चीन के लियांग कुईरोंग और जियाई ली को 6-0 से शिकस्त दी। भावना एक और कांसे का तमगा भी जीती हैं। उन्होंने खवातीन के पैरा रिकर्व ब्रॉन्ज मेडल प्लेऑफ में अपनी हरीफ राजश्री राठौड़ को 6-0 से शिकस्त दी है। उन्होंने मुकाबले में एक दूसरा मेडल भी हासिल किया है। उन्होंने इससे कबल कंपाउंड मिक्स्ड टीम इवेंट में तोमन कुमार के साथ कांसे का तमगा जीता था। भारत की सरिता ने खवातीन पैरा कंपाउंड इनफरादी इवेंट में एक दूसरा कांसे का तमगा हासिल किया है। इस नतीजे के साथ अहमदाबाद में भारत की मुहिम का इख्तिताम मजबूत और शानदार अंदाज में हुआ है। मर्दों की भारतीय जूनियर हॉकी टीम चीन के शहर मोकी में जारी जूनियर हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। 5 मरतबे के चैंपियन भारत ने आज चीनी ताइपे को 15-0 से शिकस्त देकर पूल ए में पहली पोजीशन हासिल की है। भारत ने 3 कामयाबियों और 1 ड्रॉ के जरिए 10 पॉइंट हासिल किए हैं। कप्तान अनमोल एक्का मैच के हीरो रहे और उन्होंने 6 गोल किए और ये तमाम गोल पेनल्टी कॉर्नर के जरिए किए गए। अरियान जेस ने हैट्रिक की जबकि हरपाल ने 2 गोल किए। प्रभदीप सिंह, गुरुसेवक सिंह, अर्जुन संतोष हरगुदे और अजीत यादव ने 1-1 गोल किया। भारतीय खवातीन की टीम ने अपने आखिरी इलीट पूल मैच में चीन के खिलाफ बगैर गोल के ड्रॉ खेला और क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। भारतीय खवातीन की टीम अगले मरहले में पाकिस्तान का मुकाबला करेगी। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मरकजी काबीना ने 9 रियासतों में कनेक्टिविटी को फरोग देने की खातिर 20,800 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के रेलवे के 8 तौसी प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। भारत और श्रीलंका ने L-70 तोपों को बेहतर बनाने और दिफाई इश्तराक से मुतालिक मफाहिमत नामों पर दस्तखत किए हैं। श्रीलंका ने यकीन दहानी कराई है कि वो भारत के खिलाफ अपनी सरजमीन का कभी इस्तेमाल नहीं होने देगा। भारत ने सऊदी अरब पर यमन के हूसी बागियों के हमलों की मजम्मत की है। भारत ने कहा है कि इन हमलों से आबनाए बाबुल मंदेब में आजादाना जहाजरानी को खतरा लाहा होगा। भारत ने अहमदाबाद में आलमी पैरा तीरंदाजी सीरीज के तीसरे मरहले के अख्ताम तक कुल 15 तमगे जीते हैं, जिनमें सोने के 4 तमगे शामिल हैं। और जूनियर एशिया कप हॉकी में भारत की मर्दों की टीम चीनी ताइपे पर 15-0 से शानदार जीत दर्ज करके सेमीफाइनल में पहुंच गई है। खवातीन की भारतीय टीम भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Medium wave Trigonish Vinish Vikilhertz, Dona FM channel, Kaisha Diatic Megahertz, Gadu Akashwani Kerkelin. Waswasani to Sotur Gunamus Jesusuk Asta Mafile Musharik in Masad.
2: Assalamu alaikum, Julie Akashwani Kergil Meremuika. रिंचन स्नाविनित खन युले छर्मचुन से गंगमा यंग रशिक यंती मेजबान सजाद अली शुजाती जुना सलाम पू फ्रुद मुचन सोंशिक रिंचन स्नाव खानुन यंतंग अष्टक्स बायोत आकाशवाणी करगिली छोसना मदस जग जरबा फ्रलुक्स बिनियोत लोसो लोसो मंगुन्ना लोसो खतु सुनिका समझून सक खुरे यंती दुनला जग

मीडियम वेव्स ने एफएम चैनल का मस्जिद आकाशवाणी करगिल की नजर जो वास बोझ नहीं तो सो तुर चू सो सो क्या नहीं पहुंचे दिन को चुपी प्रोग्राम को निवास पहुंच आज के निमित्त सो चू इसका यंग दाना तुक तुक लेमन पसाक पा मचा इजाजत से बाजार तेजो खुदा ना समारे पकड़े हैं। वस्सलामुअलैकुम।